0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में

0: टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/FM247365.

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 247 365

0: This public service message is brought to you by FM 100. बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है. तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है. लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें. ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए पीटीए और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें. ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
2: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं. अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है. और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है. ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराहकुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है. इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है. अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदामात जरूर उठाएं. जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें. अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें. अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स. डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है. बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए.

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इनक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम
4: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर कल रांची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन अब आप भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
5: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें मजीद मालूम के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
6: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
7: शौकत खानम कराची की तकदीर
8: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
9: This program is brought to you by
0: HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
7: and शौकत खानम कराची की तकदीर
5: and सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा
10: and फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
11: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान
12: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान

अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे समीहा. और आज मौसम बड़ा बहुत अच्छा है मौसम. एनीवेज अपनी सुबह का आगाज करना चाहिए अल्लाह ताला के जिक्र से अल्लाह ताला के शुक्र से. हम अपनी सुबह का आगाज अपने शो का आगाज करते हैं कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ. आइए पढ़ते हैं. हम पढ़ रहे हैं सूरह अनकबूत का तर्जुमा. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आयत नंबर 9 से. और लोगों में कुछ वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए फिर जब अल्लाह की राह में उन्हें कोई तकलीफ दी जाती है तो लोगों के फितने को अल्लाह के अजाब के बराबर समझते हैं. और अगर तुम्हारे रब के पास से कोई मदद आ जाए तो जरूर कहेंगे कि हम यकीनन तुम्हारे साथ थे. क्या अल्लाह उसे खूब नहीं जानता जो तमाम जहान वालों के दिलों में है. और तो अल्लाह ताला तो दिलों का हाल जो है जानता है. और दुनिया ऐसी है कि अगर आपके पास कोई मदद आ जाए या आपके पास पैसा आ जाए तो लोग बोलेंगे हम तुम्हारे साथ हैं. लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा ना हो तो लोग कहते हैं बाय बाय ओके बाय. खैर और मौसम बड़ा सुहाना है बड़ा प्यारा है और स्कूल गोइंग बच्चे बड़े खुश हैं तो बड़ा अच्छे मौसम बड़ा मजा आता है. खास तौर पे उस वक्त मजा आ रहा होता है जो जा रहे होते हैं क्या कहते हैं मोटरसाइकिल पे. असल में जो मौसम का मजा ना मोटरसाइकिल वाले उठा रहे होते हैं. खुशी की बात यह है दोस्तों कि मैंने जो है वो देखा है कि मैंने जो देखा है कि भाई खवातीन आज मैंने दो तीन खवातीन देखी हैं जो बड़ी क्या कहते हैं अच्छी बाइक चला रही थी और बहुत स्टाइलिश भी लग रही थी. तो आई थिंक इट वाज सो कूल नाउ कि लोग खवातीन अब बाइक चला रही हैं और अब वो नॉर्मल हो गया है. कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. पहले तो लोग कहते हैं ओ माय गॉड लड़की जो है वो गाड़ी चला रही है. लेकिन अब ऐसा नहीं है. खैर और पक्के दोस्तों का मेरी प्यारी प्यारी बच्चों का टाइम आ गया है और आज स्पेशल बर्थडे भी है अहमद नवीद की. सो हैप्पी बर्थडे अहमद नवीद मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे. और आज अहमद नवीद जो है वो 8 ईयर्स के हो जाएंगे. वेरी गुड भाई क्या बात है क्या बात है. आई होप यू हैव अ ग्रेट डे. और आई नो कि बर्थडे वाले दिन स्कूल जाने में मजा नहीं आता है लेकिन मैं आपको बताऊं कि स्कूल में ही सेलिब्रेशन का सबसे ज्यादा मजा आता है. और पता नहीं मैं तो स्कूल में सेलिब्रेट बहुत अच्छा करती थी और मेरे पेरेंट्स केक भेज देते थे या कैंटीन से हम चीजें मंगा के पूरी क्लास को खिला देते थे. आई डोंट नो आपके स्कूल में क्या प्रोटोकॉल है लेकिन हैप्पी बर्थडे एंड मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. और अभी हम आपके लिए पक्के दोस्त का सॉन्ग भी लगाएंगे. फिलहाल हम वो उन प्यारी प्यारी बच्चों के नाम ले लें जो हमारे पक्के दोस्त के गैंग में है. और बच्चा पार्टी कैसी है बच्चा पार्टी ने नाश्ता किया है कि नहीं. और मैं बच्चों को यही बोलती हूँ हमेशा कि सारी चीजें जो है ना वो रात को ही आपने निकाल लेनी है. सुबह के लिए कुछ भी ना छोड़ें. और अपना यूनिफॉर्म और जैसे सब अम्मी अबू तैयार होकर जाते हैं ना ऑफिस इसी तरीके से ना बच्चों को भी खूब तैयार होकर स्कूल जाना चाहिए. और स्पेशली मैं एक बात बताऊं इसका मैं अभी तक इतना ध्यान नहीं रखती लेकिन रखना चाहिए. सो ऊपर से यूनिफॉर्म तो सब साफ होता है लेकिन शूज लोग आपके शूज बहुत चेक करते हैं. तो जो भी आपके शूज हैं आप कोशिश करो देखो कि सुबह के वक्त या रात के वक्त की चेक कर लो कि साफ हो. साफ शूज से ना बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. राइट ओके तो वो प्यारे बच्चे हैं अरमान अहमद फराज और राशान यजदान इब्राहिम अबीहा आयान इनाया अहमद अली मोहम्मद अली आयजा एन आयरा उनीम शेर अली सिद्दा रहीम इकरा जोहा उमर अहमद सैयदा उम्मे हानी सैयदा हमना सैयद उबैद रजा हरीम फहद अब्दुल हन्नान नबीहा आदिल फरान जैन सुहेब सुदेश आमना हमाद वायद हानिया हूरिया अहमद नबीहा नबीरा सुबहान एंड सबीहा एंड ऑल्सो फातिमा उमेर कबीर मिना एंड मशाल हसन शेरियार मूसा ईसा एंड अरमिश अलिशबा रिजवी नूरुलैन उमर शामीर अब्दुल मुगनी महरीन मोहम्मद अहमद अनाबिया अब्दुल हादी अब्दुल वासी अब्दुल रहमान असद एंड उर्वा रूहान रायान अनाबिया अब्रीश हमदान एंड अजलान अलीशा जिया आयरा जिया फसी मुर्तजा दनीन एंड रायहा चलानी नुसरत एंड जावियार एंड जुरेज एंड राइद. तो ये तमाम बच्चे उन लोगों के लिए हमारा गाना है पक्के दोस्त. और क्योंकि आज जो है वो हैप्पी बर्थडे है अहमद की तो अगला गाना जो है वो अहमद के लिए. तो जिन जिन की भी आज बर्थडे है तो आइए सुनते हैं पक्के दोस्त का ये गाना सालगिरह मुबारक.

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: This program is brought to you by HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ
4: एंड सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा एंड

0: FM 100 traffic update.
1: ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फरोख इजहार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ इस तरह है। एफएम 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक इस वक्त गरीबाबाद से वो ट्रैफिक जो हसन स्क्वायर और वहां से स्टेडियम रोड से आ रहा है कार साथ शहर फैसल की जानब सुधरमैनी रास्ते पर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। गाड़ियां स्लो मूव कर रही है। ऑफिस टाइमिंग की वजह से ये सूरत हाल पेश आ रही है। वो लोग जो इस वक्त लियाकतबाद या गरीबाबाद से आ रहे हैं इस वक्त स्टेडियम रोड और कार साथ ब्रिज की जानी ट्रैफिक की सूरत हाल से आगा रहे हैं और अपने टाइम को करते हुए आए ताकि इस वक्त जगह पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय एफएम 100।
2: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ
6: एंड सरसब्ज नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा एंड

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
2: शौकत खानम कराची की तकदीर।
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
4: 100 FM।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: एंड शौकत खानम कराची की तकदीर।
5: एंड सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा।
0: एंड
6: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
7: खवातीनो हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में जाहिर कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा ओढ़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं जबकि दरअसल इस सवल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर देर से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रहा अपने बच्चों पर नजरें रखें ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़्म एक कौम, एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: FM 247-365

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
0: Like us on facebook.com/fm247365 fm247365

0: setting up pre-cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: वीकली लकी ड्रॉ विनर कराची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247 365

0: 45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं. ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता. याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है. याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता. अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं. ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा. अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं. शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा. इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे. इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें. अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं. याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा. लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें. अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें. इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें. اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
6: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
7: FM 24/7/365

0: 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: setting up low-cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: लाजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर कराची तो जीती ने मुनव्वर फातिमा डायसन हुन तुसी भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनाम जीत सकते हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
4: facebook.com/fm247365 fm247365

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उनके कंप्यूटराइज कॉमन शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मुल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बर वक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365. FM 100.
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.

Yes, everybody. तो प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज हो गया और भाई इस वीकली ट्रेंडिंग ड्रामे पर भी हमने बात कर ली जो कि रहा आपकी इज्जत जो कि लोगों को बहुत पसंद आया. नो डाउट दे हैड डन अ ग्रेट ग्रेट एक्टिंग और एक अच्छा टॉपिक भी है जिसे हाईलाइट किया जा रहा है और लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा है. और सैटरडे और फ्राइडे वाले दिन लोगों ने देखा तो लेकिन उसके बाद वो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा हिट रहा एंड नो डाउट वेरी वेरी नाइस ड्रामा. अच्छा उसी के साथ साथ आज हमने आपसे सवाल ये पूछना है कि जब लाइट जाती है तो आप टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं. ओ माय गॉड दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि जब लाइट चली जाती है तो आप टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं. भाई ये एक बड़ा जरूरी सवाल है कि जब लाइट आपकी चली जाती है तो आप टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं. मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो चीज हम लोग करते हैं ना वो होता है इंतजार कि जी अब आएगी तब आएगी थोड़ी देर बाद आएगी नहीं इस वक्त आएगी उस वक्त आएगी. और वाकई में ना इतना तवील आपको टाइम लगता है. मुझे लगता है अक्सर औकात लोग क्या करते हैं अपने फोन में ना गैलरी खोल के पुरानी तस्वीरें देख रहे होते हैं या फिर और क्या करते हैं. मुझे लगता है ज्यादातर लोग ये कर रहे होते हैं. अगर इंटरनेट नहीं तो फिर आप पुरानी तस्वीरें पुरानी चीजों को याद कर रहे होते हैं. लेकिन जब लाइट जाती है तो आप टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं हमें जरूर बताएं क्योंकि आज का हमारा आपसे यही सवाल है कि जब लाइट जाती है तो आप टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं. तो आप जो भी करते हैं हमें जरूर बताएं और 3636 पर मैसेज करें या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मैसेज कर हमें जरूर बताएं कि जब लाइट जाती है तो आप टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं. कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो भाई हम भी आपसे फॉलो करेंगे. ऐसे ही जब लाइट जाएगी तो हम भी यही करेंगे. तो क्या करते हैं आप हमें जरूर बताएं. ये हमारा आपसे आज का सवाल है तो हम जवाब का कर रहे हैं इंतजार एक अदद ट्रैक के साथ.

0: in setting up free-of-cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
2: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: वाजिदा वीकली लकी ड्रॉ विनर कल रांची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन। अब आप भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
4: FM247365 FM247365

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में, जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारते इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: 100 FM।
4: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है, और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, या ये 6 हिंसों का कोड भेज दे। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है, जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखे, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए? अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें। 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर। इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें: सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें, नंबर बंद या सस्पेंड न होने दें, व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें, ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल। अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आपका अकाउंट फॉल कर देता है, बशर्ते कि सिम कार्ड आपके पास हो। सिम कार्ड सबसे अहम है। इजाफी तौर पर आप अपने नंबर और मसले की तफसील के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। राब्तों को फौरी इतला दें। अकाउंट बहाल होते ही अपने तमाम राब्तों को पैगाम भेजें: मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, बराह करम पिछले किसी भी पैगाम या दरख्वास्त को नजरअंदाज करें। इससे आपके दोस्त और खानदान मजीद नुकसान से बच सकते हैं। अब देखते हैं मुस्तकबिल में हैक होने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी फॉलो करें। सेटिंग्स, अकाउंट, 2-स्टेप پاسپورٹ ویریفیکیشن یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے کہ امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
6: FM 24/7/365

ऑल राइट जी, सो वी आर बैक अगेन. ब्रेक भी शामिल कर लिया, ट्रैक भी शामिल कर लिया, और उसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आप हमें 3636 पर मैसेज कर सकते हैं, यानी कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे. साथ ही साथ आप RJ फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी कॉमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी स्टेटस हो चुका है अपडेट. और हमारा आपसे आज का सवाल यह था कि जब लाइट जाती है तो आप टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, किस तरीकाकार के जरिए आप अपने उस टाइम को पास करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल तरीन वक्त होता है पास करने के लिए जब आपके यहां की लाइट चली जाती है. फौजिया मूसा कहती हैं कि रेडियो ट्यून करती हैं, कहती हैं टाइम पास करती हूं बिकॉज रेडियो इज अ हेल्दी एक्टिविटी. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. वालेकुम अस्सलाम. तो फौजिया, जब लाइट जाती है आप सिर्फ तब रेडियो ऑन करती हैं, वैसे नहीं करती हैं आप, ऐसा क्यों? आप आम टाइम में भी रेडियो सुन सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा नहीं मतलब स्पेसिफिकली आप उस टाइम पे करती हैं, वैसे भी करती हैं. एंड इसी के साथ साथ हमारे पास गुमनाम मैसेजेस तो लाजमी आते हैं, ये हमें मैसेज करते हैं, कहते हैं आप ही जब लाइट चली जाती है तो बस कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि कुछ होता ही नहीं है. ये बात तो बिल्कुल सही है, कुछ होता नहीं है, मतलब एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है जब आपके यहाँ की लाइट जाती है ना, तो वो समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें, हम कैसे वक्त गुजारें, लेकिन बस क्या करें, एक सब्र और बर्दाश्त और इंतजार करके वो वक्त गुजर ही जाता है. जरीनूर कहती हैं सलाम, कैसी हैं, बहुत सारी दुआएं आपके लिए. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और दुआएं आपके लिए भी. सो गॉड ब्लेस यू भाई, आप सबको अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे और हंसता मुस्कुराता रखे. और साथ ही साथ हमारा सवालों का सिलसिला भी आपके साथ जारी है. और भाई साथ ही साथ बात यह है कि हमने आपसे ये पूछा है कि जब लाइट जाती है तो आप टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, और इसी के साथ साथ आज 7th of September भी है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू. अगर आज मेरे लिसनर्स में से किसी की सालगिरह है तो ये खास दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी सालगिरह का, क्योंकि जी ये दिन बड़ा अहम होता है क्योंकि ये आपकी सालगिरह का दिन होता है, और सालगिरह का दिन हमेशा की तरह बहुत ही अहमियत रखने वाले दिनों में से एक दिन होता है. तो आपको जी बहुत मुबारक हो. इसी के साथ साथ मैंने कहा कि जी लगे हाथों नजर भी डाल लेते हैं कि और कौन कौन से दिन जो हैं वो आज के दिन मनाए जा रहे हैं. अगर कुछ इंटरेस्टिंग डे है तो बिल्कुल आपसे शेयर करेंगे हम कि कौन कौन से दिन जो हैं वो आज के रोज मनाए जाते हैं. ओके जी, तो आज है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर. ओके जी, क्लीन एयर को आप जो है वो इनहेल करें और एक्सहेल करें. बट अभी कराची की अगर करंट एयर के बारे में बात की जाए सो ये है डस्टी एयर, यानी कि आप घर से बाहर तो निकलते हैं तैयार होकर नहा धोकर, लेकिन जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं ना तो बेसिकली आपको देख के ऐसा लगता है कि आप मिट्टी के तूफान पार कर आए हैं अपनी मंजिल पर, क्योंकि कराची में अभी क्लीन एयर तो नहीं, बेसिकली काफी डस्टी एयर है, मिट्टी ही मिट्टी है. कहीं भी किसी भी रोड या काम पर आप जाएं तो आप सिर्फ मिट्टी का शिकार होते रहते हैं, और इसके अलावा कोई और चारा नहीं है हमारे पास लेकिन सफर भी करना है क्योंकि क्या करें, वही मंजिल पर पहुंचना है, तो आप कुछ भी कर लें, जितना भी अपने आप को कवर कर लें या सेव कर लें, लेकिन मिट्टी तो आती ही आती है. तो फ्रेश एयर लेने के लिए आप क्या करते हैं हमें जरूर बताएं. कराची में तो यह सिचुएशन चल रही है, अगर कहीं घूमने का प्लान है तो ये भी एक अच्छा आइडिया है. खैर जी, जब लाइट जाती है तो आप टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं हमें जरूर बताएं. हमारा और आपका साथ 2 बजे तक है, आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी मैसेज करें, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमें बताएं कि आप अपने टाइम को पास करने के लिए क्या करते हैं तब जब लाइट जाती है. जब तक आप हमें बता रहे हैं, एक और ट्रैक एंड देन वी विल बी राइट बैक.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. Ji haan, main aa chuki hoon wapas, kyunki aap logon ke saath hamara aur aapka saath hota hai 12 se 2 ke darmiyan, aur ye saath aapka aur hamara qaim o daim hai. कुछ बातें हो गई हैं एंड कुछ हैं बाकी. जी हाँ, तो वो बातें भी हम करेंगे, लेकिन आज हमने आपसे सवाल ये पूछा था कि जब लाइट जाती है तो आप टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, किस तरह अपने वक्त को गुजारते हैं कि जी ये मुश्किल वक्त गुजर जाए. तो इसमें आप क्या क्या करते हैं, क्या तफरीहात के जरिए आप इस वक्त को गुजारते हैं, हमें जरूर बताएं. और इस पर हमारे पास जवाब आना शुरू भी हो चुके हैं, और अगर आप हमें जवाब देना चाहते हैं तो 3636 पर मैसेज करें, या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्टेटस हो चुका है अपडेट. तो भाई, जब तक आप हमें बता रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम के सेकेंड हाफ की रिवायत को कायम करते हैं, यानी कि एक अदद ट्रैक तमाम सुनने वालों के नाम, और इसके बाद तो हमारा एक अदद ऑब्वियस सवाल होता ही है, वो तो हमारे पुराने लिसनर्स जानते हैं, और नए नहीं जानते तो कोई बात नहीं जी, वापस आकर आपको बताते हैं. पहले आप ट्रैक को एंजॉय करें, फिर आपसे पूछते हैं दूसरा वाला सवाल भी.

हम आपसे ये जानेंगे कि जी आपके लंच में क्या है, क्या बनने जा रहा है, क्या बन चुका है या फिर क्या खाने का इरादा है। यानी कि अक्सर औकात ये होता है कि हम प्लान ही करे होते हैं कि यार आज ना घर से लंच नहीं लाए तो चलो जी कुछ बाहर का ट्राई करते हैं, या मैंने इस जगह की बड़ी तारीफ सुनी है, ये चीज बड़ी मजे की होती है, तो कुछ इस तरह का प्लान है या फिर नहीं भाई घर का डब्बा आया है आज आपके लंच में। तो भाई आपके लंच में क्या मौजूद है हमें जरूर बताएं। रशीद खान तो बता चुके हैं कि जी उनके लंच में सब्जी है और इसके अलावा हमें किसने बताया, और इसके अलावा हमें लुकवर्ल्ड ने बताया है कि उनके लंच में क्या है। कहती है अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसी हैं? कहती हैं जब लाइट जाती है तो मैं वैसे ही मोबाइल यूज करती हूं, और अगर मोबाइल चार्ज में ना हो तो कोई काम कर लेती हूं, जैसे अलमारी ठीक करना या उस वक्त जो समझ आए। ओके दैट्स ग्रेट, पर अगर लाइट की लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती यार, बिकॉज आपको वो हर जगह लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन चलो अच्छी बात है अगर आप लोग ये काम करते हो तो। कहती है आज लंच में पुलाव और चिकन टिक्का है। वाह भाई वाह, वेरी वीआईपी, इतना जबरदस्त लंच आपके लंच में मौजूद है, क्या कहने हैं भाई लुकपल्ड आपके। जरूना खान कहती हैं कि मोबाइल और क्या। ओके तो ये तो भाई मोबाइल इस्तेमाल करती हैं जब लाइट जाती है, इसके अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं करती हैं, तो बेसिकली देखा जाए तो मोबाइल पर ज्यादा तवज्जो हम लोगों की होती है, लेकिन अगर बैड लक ये हो कि उसमें चार्जिंग ना हो तो फिर जरा मजबूरी हो जाती है। दरीनूर कहती है मैं तो काम करके टाइम पास करती हूं, फिर भी लाइट नहीं आती तो फिर लाइट का इंतजार करती हूं। इन द एंड हम सब यही करते हैं, सब्र और इंतजार कि कभी ना कभी तो आएगी। और भाई आपके लंच में क्या मौजूद है हमें जल्दी जल्दी मैसेज करके बताएं। सब्जी है, बिरयानी है, पुलाव है, कबाब है, निहारी है, सालन है या फिर कुछ और है मुनफरिद सा, तो हमें जरूर बताएं। अच्छा भाई सितंबर के सीजन में कौन कौन से फल और सब्जियां आते हैं? अच्छा गाजर नजर आना शुरू हो गए, यानी कि गाजर आ चुकी है, और गाजर के तो भाई लातदाद फवायद होते हैं जो बॉडी में वाइटामिन्स में कन्वर्ट होते हैं, आईज के लिए बहुत अच्छे हैं, यानी कि आंखों के लिए जो है ना वो गाजर बहुत अच्छी है। और सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये है कि गाजर में फाइबर की वजह से डाइजेशन बोल जो है वो मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, यानी कि फाइबर बहुत होता है, कैलोरीज रिलेटिवली कम होती हैं, इसलिए वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छी चॉइस होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है, विटामिन के और दूसरे विटामिन्स भी मिलते हैं, तो गाजर के लातदाद फवायद भी हैं। और मजे की बात क्या है, ये सबका बड़ा फेवरेट भी होती है गाजर। और उसी के साथ साथ अगर अभी हम फलों को मद्देनजर रखते हुए बात करें कि इस वक्त करंट कौन कौन से फल मौजूद हैं, तो इस वक्त सेब हैं, अंगूर हैं, नाशपातियां हैं, आम भी हैं, मतलब आमों की इस वक्त लास्ट राइड चल रही है, अमरूद हैं, बनाना है, पपाया भी नजर आना शुरू हो गए हैं, और पपाया भी बहुत ही अच्छे हैं खाने के लिए। अनार भी आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी अच्छे वाले अनार नहीं आए, लेकिन अनार नजर आना शुरू हो गए हैं, और शरीफा। तो इस तरह के फल इस वक्त मौजूद हैं सितंबर के सीजन में। और खीरे हैं, तुरई है, कद्दू है, बैंगन है, हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, शिमला है, ये सारी चीजें इस वक्त आपको अच्छी फ्रेश नजर आ रही हैं। और विंटर वाली सब्जियां धीरे धीरे स्टार्ट हो गई आना, जैसे कि गाजर, पालक, मेथी, बंद गोभी, फूल गोभी, मूली, शलजम, चुकंदर और मटर। मटर अभी आपको कहीं कहीं नजर तो आएंगे, लेकिन इस वक्त मटर की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही होंगी, क्योंकि जब भी कोई नया फल या सब्जी आती है तो बड़ी महंगी होती है, और फिर वो धीरे धीरे जो उसकी कीमतें हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। तो खैर आपके लंच में क्या मौजूद है हमें जरूर बताएं। इस वक्त करंट फल और सब्जियों के हवाले से तो हमने आप तक आगाही फराहम की है, आप इसमें से कोई मुंसलिक चीज खा रहे हैं या फिर कुछ और बनाने का इरादा है, जो भी आपके लंच में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम कर रहे हैं आपके मैसेज का इंतजार। तो जल्दी से बता दें लंच में क्या है आपके।

0: ओके जी, तो लंच में क्या करें हमें जल्दी जल्दी बताएं, बिकॉज वी आर एक्साइटेड टू नो दिस कि आपके लंच में क्या मौजूद है। और भाई गुमनाम मैसेजेस में हमारे पास एक और मैसेज आ चुका है, कहते हैं आप ही आज तो निहारी और पराठा खा रहे हैं, वेरी नाइस। अच्छा वैसे आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ निहारी, मुझे तो निहारी मतलब नहीं खाते, और निहारी हमारी नेशनल डिश है, लोगों को बड़ी पसंद है, लेकिन निहारी की भी एक खसूसियात यह है कि निहारी बासी होने के बाद बहुत मजे की लगती है, जैसे कि निहारी हो गई या कढ़ी हो गई या बिरयानी हो गई, घर की ये चीजें ना बासी होने के बाद बहुत ज्यादा मजे की लगती हैं, मतलब इनमें एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है और इनका इंतजार होता है कि यार ये बासी होकर खाने में ज्यादा मजा आएगा। कढ़ी भी ऐसी चीज है, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है तो और मजे की लगती है, और कढ़ी तो वेरी वेरी यमी होती है ना। तो ये चंद चीजें आपको बासी होने के बाद ज्यादा अच्छी लगती हैं, एंड आई डोंट नो कि इनकी निहारी बासी है नहीं लेकिन मैंने खुद से ये बात कह दी। तो आप ताजा निहारी खा रहे हैं जो भी खा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ऐसी मेरे जहन में बात आई तो मैंने कहा चलो जी ये भी कह देते हैं अपने लिसनर्स से। निहारी की भी अलग ही बात होती है, लोगों की बड़ी फेवरेट होती है। और उसी के साथ साथ मौसम पर भी बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया मौसम पर हमने कोई बात नहीं करी है, और इस वक्त क्या ताजा तरीन सूरत हाल चल रही है इसके बारे में भी आप लोगों तक आगाही फराम करेंगे कि अपकमिंग डेट्स में क्या ताजा तरीन सूरत हाल है मौसम के हवाले से, तो बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक, एंड देन वी विल बी राइट बैक।
1: Free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम, 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची, सोबराज अस्पताल कराची, शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स, 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, रिहैबिलिटेशन यूनिट, न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
3: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
4: Like us on facebook.com/fm247365
6: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: ओके, सो ट्रैक के साथ हम वापस आ चुके हैं। मौसम की ताज़तरीन सूरत हाल हमने आपको बताया जो थोड़ी सी सैड है। इसी के साथ साथ जरीनूर कहती हैं कि आज खाने में चिकन अचार गोश्त और आलू पालक है। वाओ भाई, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस एंड यमी। इसी के साथ साथ लुकपल भी मैसेज करती हैं, कहती हैं मोबाइल चार्ज ना हो तो कोई ना कोई काम करती हूं, अगर लाइट नहीं होती तो फ्री बैठो तो अजीब लगता है, इंतजार नहीं किया जाता, टाइम और ज्यादा लॉन्ग लगने लगता है मुझे, क्योंकि हमारी साइड लाइट बहुत लंबी जाती है। अरे हाय लुकवर्ल्ड, फिर तो मैं आपके गम में शरीक हूं, मतलब आई एम वेरी सैड फॉर यू। हमारे वैसे लाइट नहीं जाती, लेकिन जब ये बात कहो ना तब तो फौरन चली जाती है। और जब हम मेहमानों को ये कहते हैं ना कि जी हमारे यहां तो कभी लाइट नहीं जाती, और उनके आते जब लाइट जाती है ना, तो मैं कहती हूं अल्लाह, उससे ज्यादा एम्बेरसिंग मोमेंट कोई भी नहीं होता कि जब आप ये कहते हैं ना नहीं हमारे यहां तो कभी लाइट नहीं जाती, और वाकई में कभी नहीं जाती, लेकिन जब आप ये बात किसी को बता रहे होते हैं ना तब आपके यहां लाजमी तौर पर लाइट जाती है, तो उस वक्त बड़ी शर्मिंदगी होती है आपको कि यार ये क्या कह दिया हमने, ये क्यों कह दिया, ऐसे तो बेहतर था हम ये बात कहते ही नहीं। लेकिन ये हम सबके साथ जरूर होता है कि जो हम बात कहते हैं ना उसका ऑपोजिट जरूर होता है। खैर जी, फिलहाल की ताज तरीन सूरत हाल के हवाले से अगर आपको बताएं तो भाई इस वीकेंड में बहुत कुछ हुआ, यानी कि वीकेंड स्पेशल में हमारे पास आपकी इज्जत रहा, यानी कि वो ड्रामा बड़ा वायरल हुआ, बहुत ज्यादा पसंद किया गया, और वाह की एक्टिंग को, एहसन खान की एक्टिंग को। उसी के साथ साथ द गुड न्यूज इज दैट कि पसूड़ी, जो कि हम सबका मोस्ट फेवरेट तरीन ट्रैक है, उसने 1 मिलियन क्रॉस कर लिए हैं, 1 बिलियन, यानी कि पाकिस्तान की फर्स्ट एवर वीडियो है जिसने 1 बिलियन क्रॉस कर लिए हैं। सो पसूड़ी को इतना ज्यादा पसंद किया गया है कि पाकिस्तान की फर्स्ट एवर वीडियो बनी जिसने 1 बिलियन क्रॉस कर लिया है। सो इस मौके पे तो हम यही कहेंगे जी कि ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अली सेट्टी और शे गिल, जिन्होंने इस गाने को गाकर और इसमें 4 चांद लगा दिए। नो डाउट दिस ट्रैक इज सो नाइस, और भाई कितने प्राउड की बात है कि पाकिस्तान का ये फर्स्ट एवर ट्रैक है जिसने 1 बिलियन क्रॉस कर लिए हैं। सो वाह भाई वाह, दैट्स अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट न्यूज। और इसी मौके पर, इसी खुशी पर हम इस ट्रैक को जरूर करेंगे शामिल, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक, एंड वी विल बी राइट बैक विद दिस ट्रैक, क्योंकि पसूड़ी के हो चुके हैं 1 मिलियन क्रॉस, ये तो उनकी मेन वीडियो है, और जो लोगों ने लिरिकल डाली है वो डाली है, उस पर भी 1 मिलियन व्यूज है, लेकिन जो ओरिजिनल वीडियो है वो 1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। सो वाह भाई वाह, ये बड़ी प्राउड की बात है। और इसी के साथ साथ फिलहाल हम चलते हैं ब्रेक की जाने, और आएंगे वापस इस सुपर डुपर हिट ट्रैक के साथ।
1: This program is brought to you by
2: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं, सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इनक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: शौकत खानम कराची की तकदीर
0: Us on facebook.com/FM247365 FM247365
4: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان السلام علیکم پاکستان پاکستان
6: Across the nation, there is only 100 FM.

0: your location for maximum music.
1: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: शौकत खानम कराची की
4: तकलीफ. अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
5: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
6: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
7: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. This public service message is brought to you by FM 100.
8: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: in setting up pre-frost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इनक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
2: का वीकली लकी ड्रॉ विनर कल रांची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन अब आप भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय स्वागत आनंद कराची की तकलीफ FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

भाई कोई नहीं, गलतियां और गलतियों को सुधारने का सलीका ये आपको आना चाहिए. और अगर कभी रिश्तों में भी ऐसा हो जाए, जैसे कि आज एक बड़े सेंसिटिव रिश्ते की बात हो रही है जो कि है फुप्पो ये कहते हुए भी कैसा लगता है ना. बेशक हमारे यहाँ उस तरह का हमारा जहन या हमारी बात को उस तरह रखा नहीं जाता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा, क्योंकि एक ब्लड कनेक्शन होता है, एक ब्लड वाइब होती है, और उससे ये लगता है कि हाँ भाई आप जो चीज कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट हो रही है, कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई सिंसियरिटी है आपकी, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही होती है. लेकिन पता नहीं क्यों हमारे यहाँ इन रिलेशंस को, मे भी शायद क्योंकि वो एक किसी सेकंड होम की बंदी होती है, वो आपके घर पे आके हर तरह से शेयरिंग केयरिंग का पार्ट बन जाती है. मे बी बिकॉज ऑफ दिस आप फैमिली, इसलिए अपना भी फैमिली मेंबर बजाय आप 3, 4, 5, 6 लोगों को एक्सेप्ट करने के, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका एक मेंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो चीजें बढ़ रही होती हैं. और मैं समझती हूँ जब आप इस माइंड जोन में नहीं हो, जब आप में एक्सेप्टेंस नहीं हो, तो फिर आप किसी की भी बच्ची या किसी के भी घर पे इस बात को ना लेकर जाएं कि भाई आप ऐसा कुछ चाहते हैं या कर सकते हैं या आपकी ख्वाहिश है. क्योंकि जब तक आप में एक्सेप्टेंस नहीं होगी ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते. और जब एक्सेप्टेंस हो तो ही आप किसी भी रिश्ते को ओन करते हैं.

0: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
1: Shaukat Khanam, Karachi Ki Takleef.
2: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
3: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
0: Like us on facebook.com/FM247365
5: FM247365
6: Let's celebrate
7: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

जी जनाब, और बात हो रही है आज के कैसे, कहां, कब तक, किस तरह आप चीजों को मैनेज करें। तो जनाब, चीजों को मैनेज करना बड़ा जरूरी है, वरना जिंदगी जो है ना वो आपको चांस नहीं देती। और चीजें क्या है, चीजें आपके रिलेशन है, आपके ताल्लुकात हैं, अच्छे बुरे, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, हर तरह की बात। याद रखें, जिस बंदे का मिजाज एक जैसा होता है, एक तरह का होता है, चाहे आप उसे अच्छा सुना दें चाहे आप उसे बुरा सुना दें, वो बंदा आपके लिए ना कोई भी वैल्यूएबल चीज नहीं रखता। वो कोई आपके बारे में, आपको अगर किसी को चेक करना है कि यार मैं इसको अच्छी बात का भी मशवरा से लूं तो भी ऐसी होता है, बुरी बात का मशवरा लूं तो भी ऐसी होता है, वो आपसे उस तरह की फीलिंग्स रखता ही नहीं है। जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, हाँ ये जरूर कह सकते हैं आप, किसी का रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, किसी का दरमियाना और किसी का बिल्कुल लो, लेकिन उसकी टोन्स चेंज होती हैं, उनके उसके रिएक्शन चेंज होते हैं। और यही वो तरीका है कि किसी को जज करने का, कि कोई हमारे साथ कितना सिंसियर है। अगर वो एक जैसा है तो आप समझो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कमाएं, आप खाएं, आप उठें, आप बैठें, आप अच्छे लगें, आप बुरे लगें, वो कहते हैं खली वली, कोई जरूरत नहीं है कोई ऐसी बात करने की, हाँ हाँ ठीक है, ओके सही है, ठीक है, करते रहो। लेकिन जहां कोई रिएक्शन दे रहा होता है ना, वहां उसको फर्क पड़ रहा होता है, बहुत फर्क पड़ रहा होता है।

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर न आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
3: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

जी जनाब, और बातें बहुत सारी हो रही हैं। मैं आइंदा हम जरूर एक बहुत जबरदस्त सा एक रिलेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पैट्स का होता है। वो भी हमें बड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नॉर्मली दिखता ही है कि हम घर में कोई पैट रखते ही नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हम कोई चीज रखते ही नहीं है तो हमें उसकी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं होता। तो हम आइंदा के दिनों में भी ना ये बात जरूर आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आज बात जो हो रही है वो हो रही है हमारे ह्यूमन रिलेशन की, और ह्यूमन रिलेशन में हम बहुत सारी चीजें एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हम एक दूसरे से कह रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सी बात ऐसी हो जो आप और मैं और हम सब मिलकर एक साथ काफी सारी चीजों को देख सकें। बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो कि आप और मैं कहते हैं कि भाई नहीं, हमें इनसे तो दूर ही रहना चाहिए, इनके मामलों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन दरहकीकत ये कि हम दूर रह रहे कहीं ना बहुत सारे रिश्तों को अपने आप से अलग कर लेते हैं। वहां से शायद हमारे फासले शुरू हो जाते हैं, वहां से शायद हमारी थकान शुरू हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। स्पेस होना चाहिए एक को कह देने का, दूसरे को सुनने का। इसी तरह से जो सुन रहा है उसको भी कभी कह देने का और कभी आपको सुन लेने का।

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 4 p.m.
2: In setting up free-of-cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
3: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इनक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
1: Like us on facebook.com/FM247365
4: FM247365 FM100
5: 31 साल FM100 आपकी आवाज अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान
4: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान पाकिस्तान

0: FM 100 traffic update.
1: हूँ फारूक शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। वो तमाम ट्रैफिक जो जैबनिसा स्ट्रीट से जा रहा है अब्दुल्ला हारून रोड और वहाँ से अहमदीना रोड की जानी ट्रैफिक का काफी ज्यादा दबाव बढ़ गया है और गाड़ियाँ स्लो मूव कर रही है। तो तमाम लोग जो रास्ते रखते हैं ट्रैफिक की सूरत हाल से आगा रहे ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुँच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए समन्वय पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100।

0: your location for maximum music.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: वीकली लकी ड्रॉ विनर कल रांची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन। अब आप भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली।
5: facebook.com/fm247365 fm247365

0: PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: वीकली लकी ड्रॉ विनर कराची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
3: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: एंड सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
5: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
6: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशत गर्दों की माली मुआवनत भी दहशत गर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
7: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
8: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादेआमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
6: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा।
7: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
8: Like us on facebook.com/FM247365
9: FM247365

0: across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
2: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली
3: ओ खैर है बरकत है बड़ा झूम झूम के गा रहा है
2: खैर ही खैर है।
3: HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
2: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
3: हाँ बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
2: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
4: जी हाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
5: शराइत और ज़वाबित लागू है।
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेक बुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉप सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
8: वाजिका वीकली लकी ड्रॉ विनर कराची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन। अब आप भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेक बुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL।
9: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजे या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखे। मजीद मालूम के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
2: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली
3: ओ खैर है बरकत है बड़ा झूम झूम के गा रहा है
2: खैर ही खैर है।
3: HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
2: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
3: हाँ बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
2: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
4: जी हाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
5: शराइत और ज़वाबित लागू है।

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
1: 100 FM।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
3: शौकत खानम कराची की तकदीर।
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
1: 100 FM।
5: मुझे प्यार से हर वक्त डली डली।
6: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
7: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
6: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
7: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
6: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
7: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
8: शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: 100 FM।
5: मुझे प्यार से हर वक्त डली डली।
6: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
7: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
6: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
7: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
6: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
7: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
8: शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: 100 FM।
5: मुझे प्यार से हर वक्त डली डली।
6: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
7: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
6: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
7: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
6: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
7: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
8: शराइत और ज़वाबित लागू है।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा।
10: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
11: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैस कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाइल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदामात जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाइल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाइल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
1: FM 24/7 365. FM 24/7 365.

0: हस्पताल कराची, सोपराज हस्पताल कराची।
1: It's 6 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
2: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
0: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
3: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
4: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, कल रांची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब, वहां HBL।
5: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
6: शौकत खानम कराची की तकदीर।
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब, वहां HBL।
8: 100 FM।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब, वहां HBL।
8: 100 FM।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब, वहां HBL।
8: 100 FM।
9: झूमे प्यार से हर वक्त डली डली,
10: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
9: खैर ही खैर है, HBL जरिए बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
10: HBL जरिए बैंक की वजह से?
9: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरिए कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
10: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
11: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरिए बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरिए आलात और शियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूम के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
12: शराय तो जवाबत लागू है।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब, वहाँ एच बी एफ
8: एंड सर सब नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीत ताजा
12: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
13: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
14: FM 247365
15: FM 100
16: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
17: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स, 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, रिहैबिलिटेशन यूनिट, न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: वीकली लकी ड्रॉ विनर कराची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
3: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
5: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: 100 FM।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: 100 FM।
9: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
10: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
11: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
10: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
11: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
10: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
12: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
13: शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
14: एंड सर सब नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीत ताजा।
15: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
1: Like us on facebook.com/fm247365
16: fm247365. You're listening to the greatest radio station in

0: setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICH यूनिट्स में मजमुई तौर पर

0: your very own destination. We are 100% always with you.
1: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
3: शौकत खानम, कराची की तकनीक.
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
5: 100 FM.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: 100 FM.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
5: 100 FM.
6: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली.
7: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
8: खैर ही खैर है. HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
7: HBL जरई बैंक की वजह से?
8: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
7: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
9: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें.
10: शराइत ज़वाबत लागू है.
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
11: एंड सर सब नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीत ताजा.
12: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
13: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
14: Assalamu alaikum, Pakistan.
15: Azan-e-Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
16: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: only on FM 100 Pakistan.
1: I just want to party.
2: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फंड बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: वाजिका वीकली लकी ड्रॉ विनर कल रांची से जीती है मुनव्वर फातिमा डायसन. अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम. पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: डॉक्टर खानम लाहौर.

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: The best variety 24/7.
4: Hello, friends. This goes out to the entire world right now. Join in. Raise your hands.

Hello, hello, my check 1, 2, 3. Assalamu alaikum, Pakistan. सभी जिंदे वालों को आयाज अहमद की जानिब से आदाब. क्या हाल है, कैसे मिजाज शरीफ है. उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे. सुन रहे अपना फेवरेट रेडियो चैनल FM 100. क्या कह रहे जनाब, मंडे वाले दिन मुलाकात होती है 9 to 11. वैसे हर दिन ही 9 to 11 होती है और मंडे के दिन खास इंतजार रहता है दोस्तों को. क्यों भाई, जरा पुराने गाने सुना दो. फिल्मी गाने भी होते हैं, गजलें भी होती हैं. तो आज भी कुछ ऐसा ही सीन है. हिट गाने भी हैं, कुछ नए गाने भी. मेरे लिए तो नए होंगे, कुछ लोगों ने सुने होंगे यकीनन, लेकिन बहुत गाने हैं भाई, पाकिस्तानी फिल्मों के बहुत गाने. लेकिन आगाज करेंगे बहुत ही हिट गाने से. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर दिल चाह रहा है मैसेज करने का, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका, KHI स्पेस टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636. ड्राइव कर रहे हैं तो मुझे मालूम है आज बड़ा रश है यार कराची में. समझ नहीं आ रही क्यों इतना ट्रैफिक, और शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट हो रहा है. तो सब्र तो हमल भैया, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ ड्राइव करें. तो दोस्तों आगाज करते हैं मेहनाज जी की इस खूबसूरत ट्रैक से, और बल्कि उनकी आवाज से.

All right, Jana, welcome back to FM 100. Ayaz Ahmed ke saath aur saath saath messages aapke pahunch rahe hain ke HR space. Text karenge aur send kar denge 3636 par. भाई सबसे पहले आज जो हमें मैसेज किया है वो एंजेलिना कह रही है, किंग अयाज आपको सलाम और बिलावल नौरीन जरीन और सब लिसनर्स को सलाम, फर्स्ट टाइम शो में मैसेज किया है एंजेलिना जी, आपको वेलकम, वेलकम टू एफएम 100। बिलावल गिजरी से अयाज भाई आपको, सिंबल जी को, कादिर भाई और तमाम प्यारे लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र, आप बतलाइए तबीयत कैसी है आपकी, सलाम कैसे हैं और चाची और सबको सलाम जरीन हो। वालेकुम सलाम सबकी जानिब से। और इसके अलावा जनाब संजीदा जी भी आ गई हैं, संजीदा जी बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, मिजाज मेरे बिल्कुल ठीक हैं। और कह रही आज मुझे शहजादे आपके यानी हमारे शो का बहुत इंतजार था, मुझे जरूरत भी कि शो के साथ मैं बहुत अच्छी हो जाऊंगी। अच्छा क्या बात, नदीम अंसारी को हम सलाम दिल की गहराइयों से। नदीम भाई कैसी तबीयत है, ठीक है?

जनाब नदीम भाई आ गए थे, थोड़ी सी जरा चीजें हमने सेटिंग वेटिंग जरा सही करा ली। नदीम भाई बहुत प्यारे आदमी, हमारी दुआएं नदीम भाई के साथ, जब मुश्किल होती है नदीम भाई हमारे साथ। अच्छा जनाब पहला गाना पसंद कर दिया संजीदा जी ने, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और जनाब सुंदस हमें सुन रही है, सुंदस क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से है? और कह रही वाह जो स्टार्ट हो गया भाई, क्या कहने, आप सुन रही है तो क्यों नहीं स्टार्ट होगा। और दूर से मुल्तान से हमें सुन रहे हैं गयासुद्दीन बलबन, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम महनाज जी, और वो पहला गाना इनको भी बड़ा पसंद आ गया और कह रहे मुझे लाइव गाते हुए याद आ गई। हाँ जनाब इन्होंने लाइव परफॉर्मेंस भी सुनी हुई है महनाज जी की, लकी हो भाई बहुत लकी आदमी, और कह रहे विद लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, वो अपनी जगह वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये है कि फिर पुरानी तो फिर पुरानी यादें होती है ना उन गानों के साथ। ओए होए हमारी प्यारी सी क्यूट सी मिसेस फारूक आ गए। मिसेस फारूक कैसे मिजाज हैं आपके, ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जनाब फेसबुक पर भी बहुत सारे दोस्त आ गए हैं, मुश्क लैला आ गई है, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। हुमा सिद्दीकी क्या हाल है आप, कहने सुकून वाला शो, फर्स्ट सॉन्ग ही जान लेवा, अरे बड़ी मेहरबानी हुमा जी, बहुत शुक्रिया आपका। चले जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं और एंजॉय करें, मैसेजेस करें 3636 पर। मैसेज करने का तरीका आपको मैं दोबारा बता दूं, क्या चाहे स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड करेंगे 3636 पर।

Friends, and now welcome back to Sunray FM 100 और साथ ही साथ messages. अच्छा जनाब, फैसलाबाद में भी लोग सुन रहे हैं बड़े प्यार से और मैसेज आ गया उनका. कौन है भला? नौरीन तौसीफ. नौरीन जी कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कहिए अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, कैसे मिजाज है? मिजाज मेरे बड़े अल्लाह का शुक्र करता रहता हूँ हर हाल में. और कह रहे तमाम हसीन तरीन जमातों को ओफो, मेरी तरफ से सलाम और ढेरों दुआएं. ढेरों दुआएं जनाब, ढेरों दुआएं. संजीदा बहन जरीन मुश्क और एंजलीन को भी सलाम. एंजलीन जी छा गई हैं, पहला ही मैसेज और लोगों ने आपको याद कर लिया. ढेरों दुआएं, अच्छा सा सॉन्ग भी डेडिकेट कर दीजिए. चलें जनाब, नेक्स्ट गाना जनाब. नौरीन की तरफ से आप सबको ठीक हो गया और रमजान पठान आ गए. यस भाई, आपको बिलावल संजो और सारे लिसनर्स को सलाम वालेकुम. आज कोई शाह फारूक का पश्तो गाना नहीं, आप रमजान भाई नहीं करो यार. आज मंडे का दिन है और मंडे के दिन जो है ना फिल्मी गाने हैं, सिर्फ गजलें हो सकती हैं.

तरह का माहौल हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, मैं यूसुफ बात कर रहा हूँ। अच्छा जनाब यूसुफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, पापोश ने लिखा इस दफा आपने? अच्छा फर्स्ट टाइम है ये, कोई दूसरा है भाई यूसुफ? फर्स्ट टाइम मैसेज किया आपके शो में, सुनकर चेहरे पे स्माइल आ गया। अरे हंसते मुस्कुराते रहो यूसुफ भाई, इतना प्यारा नाम है आपका। और अयाज भाई, नदीम भाई एफएम 100 के बेताज बादशाह, और इसके अलावा उरूसा बाजी और चाची सबको सलाम। और मुझे याद है सर, आपको याद रखेंगे यूसुफ भाई, अब मैंने आपको याद रखना। सुम्बल जी आ गई हैं, कह रही है अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, कैसे हैं आप? और फैमिली को बहुत सारी दुआएं उन्होंने दे दी हैं। क्या बात है, इतनी सारी कामयाबी के लिए दुआएं जो कर दी ना, बहुत शुक्रिया। ट्रूली लव योर एनर्जी एंड पॉजिटिविटी, थैंक्स अ लॉट सुम्बल जी। इसके अलावा चाची और मिस्टर फारूक, रानी बाजी और बिलावल भाई, सबको सलाम। चले जनाब, वालेकुम अस्सलाम। जफर आ गए हैं, जफर भाई कैसे हैं आप? भैया आज तो बड़े लोग सुन रहे हैं, मजा आ रहा है यार मैसेजेस पढ़ने में। भाई जी नेक्स्ट ट्रैक की जाने पर।

उम्मीद जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस के सिलसिले जारी हैं। और बिलावल कह रहे हैं सर छोटा भाई रावल आपको सलाम कह रहा है। रावल भाई कैसे हो, मजे में हो, एंजॉय कर रहे हो पुराने गाने? अच्छा जनाब खूबसूरत सॉन्ग कलेक्शन जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। नौरीन तौसी बहुत शुक्रिया। असगर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से मोहब्बत से आप मेरा शो सुनते हैं, इतनी दुआएं देते हैं। और मेहंदी हसन का गाना जो आपने मुझे बताया ना, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर उसको शामिल करूंगा। गहरा दाग उस फिल्म का भाई गाना है मेहंदी हसन साहब का। रमजान पठान कह रहे हैं यार भाई आपने इनकार करके मेरा दिल तोड़ दिया, अब दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं एल्फी से जोड़ दूंगा, टेंशन नहीं है, मैं मेरे पास है एल्फी है, मैं जोड़ दूंगा। अच्छा जनाब इसके अलावा रुबाब भी आ गई, रुबाब क्या हाल है? वालेकुम सलाम रुबाब। तमाम मुझे याद नहीं करते, मुझे मालूम दुख होता है मुझे कैसे कि मेरे आंसू में, बट टिशू लाओ यार टिशू ले आओ, रुबाब के मैसेज आना शुरू हो गए, क्या करूं कैसे याद करूं, चिया पढ़ना शुरू कर दूं कैसे, कोई मुझे बताओ किस तरह याद होगी। याद वाली कोई चीज हराम है हमें हुई हो, बचपन से टू के टेबल तक याद नहीं हुआ हमें, तो रुबाब तुम्हें कैसे याद करेंगे क्या बताओ मुझे, हर वक्त नाराज हर वक्त परेशान, मुझे क्यों नहीं याद कर रहे, मुझे क्यों नहीं याद कर रहे, क्या याद करूं तुम्हें, क्या क्या याद कर, नदीम भाई बताओ क्या याद कर, नदीम अंसारी भी परेशान है कि ये क्या है इसको मसला। अच्छा जनाब क्या क्लासिक सॉन्ग सुना रहे हैं आप, थैंक यू हुमा सिद्दीकी बहुत शुक्रिया। जनाब आप आज मैं कोशिश कर रहा हूँ ना जरा मेलोडियस, जरा मेरी कोशिश ये होती है गाने मेलोडियस हो, शायरी अच्छी हो। और मैनाज जी का जब जिक्र हो रहा है, एक गाना मैंने स्टार्टिंग में भी प्ले किया, एक और भी हमने क्यू शीट में गाना रखा है, वैसे भी हमारी बड़ी फेवरेट है और गयासुद्दीन बलवन की तो मोस्ट फेवरेट है। एंजॉय करें, मैसेजेस करें 3636 पर।

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This program is brought to you by
1: Shaukat Khanam, Karachi ki takbir.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है. ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें. मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है. इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे. सर्विस फाल करने के लिए जेड सेल कोड्स डायल करें. जेड सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#. अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम कीजिए.
5: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
4: पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए. याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है. लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं. शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो. अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवाकर सिम की मुल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं. शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है. पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज़ और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए.
0: facebook.com/fm247365 fm247365
6: 947365
7: Active, yummy, durable, zabardast. Ready hai pyaas? To suno yaar.

All right, जरा वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस और अपनी बातें आप लिख रहे हैं। तानिया जी भाई, तानिया जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमारा शो सुन रही होती हैं और इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से। सबको जो है वो याद भी रखती है। संजू के लिए भी उन्होंने कहा भाई उनको भी गाना जो है वो डेडिकेट करें, थैंक्स भी कह दिया भाई। संजू जी आपका भाई शुक्रिया भी और सब सुनने वालों को भाई आदाब और सलाम भी। क्या कहने, अच्छा जनाब यूसुफ कह रहे कोई बात नहीं अयाज भाई, मेहंदी हसन का कोई रोमांटिक सॉन्ग ही लगा दीजिएगा, नदीम भाई अयाज भाई को डेडिकेट कर दीजिएगा। ठीक हो गया जनाब, डन हो गया। मेहंदी हसन साहब का आज उसे ज्यादा गाने मैडम नूर जहां के मौजूद हैं और अहमद रिजी साहब का भी बिल्कुल गाना है, फुप्पा याद आ जाते हैं अहमद रिजी का गाने का जिक्र करते ही। पीर एम इलियास भाई भी आ गए, पीर मोहम्मद इलियास साहब क्या हाल है? अयाज भाई द ग्रेट, आई लव इट योर शो, प्लीज प्ले सॉन्ग मेहंदी हसन एंड नूर जहां। जीवन भर साथ निभाएंगे हम दोनों, हूं कितने जीवन, भजन वो गाना तो नहीं है लेकिन मैडम जी और मेहंदी हसन का एक गाना है तो सही, मैंने देखा था क्यू शीट में, अभी चेक करता हूँ तो वो मैं आपको डेडिकेट कर दूंगा। ठीक है, तनवीर भाई भी आ गए, अयाज आपको, बिलावल भाई को, नौरीन सिस्टर और तमाम सिस्टर को सलाम। कोई भी अरबिक सॉन्ग, और तनवीर कितों आया तू? मैं क्या, कितों आये हो तनवीर भाई? ओ आज सारे क्लासिक गाने, फिल्मी गाने, पाकिस्तानी फिल्मी गाने और गजलें। गजल अभी मैंने एक बहुत जबरदस्त गजल आज मैंने, अच्छा ये गजल में पहले भी मुझे बड़ी पसंद थी लेकिन मैं इसलिए नहीं सुनाता था कि लोग जो है ना कहीं वो डिप्रेस ना हो जाएं या उदास ना हो जाएं, क्योंकि कमाल ये गजल है। लेकिन अभी नहीं, थोड़ी सी देर में मैं आपको सुनाता हूँ। अभी जो मैं गजल सुनाने वाला हूँ, क्या मेलोडियस, क्या शायरी, और आवाज अगर मैडम जी की हो तो फिर चेक करें आप।

0: party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: क्या बात है यार, क्या जबरदस्त ट्रैक। तो ये गाने सुन के ना जरा, उस पुराने दौर में उस जगह चले जाते हैं। वाकई क्या शायरी यार। मैडम जी तो फिर मैडम जी है ना। एंजेलिना कैनी किंग, आप शो में ओल्ड सॉन्ग्स ही प्ले करते हैं या फास्ट सॉन्ग भी होते हैं? देखिए ओल्ड में भी फास्ट होते हैं और न्यू में स्लो भी होते हैं। तो कहना क्या चाह रही हो, मतलब क्या कहना चाह रही हो? अगर आप ये पूछना चाह रही कि मैं सिर्फ ओल्ड गाने सुनाता हूँ तो ये गलत फहमी। कल आपने इसी टाइम सुनना है शो, आप बोलेंगे मैं कहाँ आ गई हूँ। हर रोज डिफरेंट माहौल। आज जो है जरा सोबर सा, डिसेंट सा, पुरानी यादों का। तो बहरहाल जनाब बहुत शुक्रिया, नाइस सॉन्ग जरी नूर, बड़ी मेहरबानी। बिलावल कह रहे हैं सर शो में नए लिसनर्स की एंट्री वेलकम। अच्छा जी, हाँ यार ये बड़ा अच्छा लग रहा मुझे, नए नए जो लोग आ रहे हैं और इतनी प्यार इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब इसके अलावा नौरीन तौसीफ और जरी नूर को मेरा सलाम कह दीजिएगा। तानिया जी मैंने कह दिया, एज इट इज मैसेज मैंने पढ़ लिया। और कह रही है संजीदा वो बेहतरीन गजल, जाने क्या पूछ रहे हैं, तेरे प्यार में रुसवा होकर जबरदस्त। भाई संजीदा जी तो खुश आ रहे हैं, तो इनको तो सही, ये इनको मजा आता होगा सही। बेहतरीन गजल का इंतखाब किया है नूरजा की। अभी मैं आपको जो गजल थोड़ी देर में सुनाने वाला हूँ ना, वो भी कमाल है। यादें कब साथ छोड़ दी हैं संजीदा, इतनी भी यादों में मत खो जाओ, गिरमान से पकड़ना पड़ेगा पीछे से ना गुद्दी से, वापस आ जाओ भाई, ऐसा ना हो, इतनी मत खो जाना जनाब। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
3: FM 100's time check. It's 10 p.m. This program is brought to you by
4: Shaukat Khanam, Karachi Ki Takleef.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: FM247365. FM 100
6: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान,
5: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, पाकिस्तान।
7: एक्टिव यम्मी एडोरेबल जबरदस्त, देखिए प्यार तो सुनो यार।

अच्छा जनाब, नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं और ये भी कमाल ट्रैक है। थोड़ा सा जरा लाइटर मूड वापस मैं ले आता हूँ आपको लाइटर मूड पे। बहुत गहराइयों में चलेंगे हम। और रूना लाला जी ने भी क्या खूबसूरत इस गाने को गाया है।

रहे हैं जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं। असगर भाई बहुत दिल से शो सुन रहे हैं मुझे लग रहा है, और दिन बा कह रहे भी संजू को पसंद आ। बिल्कुल जनाब, संजीदा जी ने सारा पूरे हफ्ते की रिपोर्ट बता दी कि रूना लैला जी ने सारे दिनों के बारे में बताया, एक दिन की भी छुट्टी नहीं की उन्होंने। अच्छा जनाब, और पीर एम इलियास कह रहे हैं अयास जी सुपर सॉन्ग रूना जी आई लव इट वाओ। अच्छा ठीक हो गया जी, मैंने एज इट इज पढ़ दिया आपका मैसेज। एंजेलिना कह रही है किंग मैंने तो सिर्फ सॉन्ग सुनकर इंजॉय करती हूँ, सिंगर्स न्यू हो या ओल्ड मुझे इससे इंटरेस्ट ही नहीं है। एंजेलिना जी छा गई है, मैं कह रहा हूँ खाम का परेशान हो रहे हैं नए पुराने गाने के चक्रों में, मसला ही हल कर दिया। वाह वाह वाह क्या कहने। अच्छा जनाब, और दिल से नुआए शहजादे अल्लाह पाक बुरी नजर आए। क्या बात है, क्या बात है संजीदा जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मिसेस फारूक को भी मेरा बहुत सलाम, मिसेस फारूक उनकी जानिब से वालेकुम अस्सलाम। चले जनाब, तानिया जी ने भी कहा कि भाई लोगों को गाने डेडिकेट करें, तो तानिया जी ये गाना मैं आपको डेडिकेट कर देता हूँ, और वो है कैसे,

क्या कहने, क्या कहने गुलाम अब्बास साहब के। अच्छा ऐसे एक बात है, लिविंग लेजेंड इस वक्त मेरे ख्याल से यही है। मेहंदी हसन साहब भी इस दुनिया से चले गए, मसूद राना साहब, अहमद रुश्दी साहब, जितने भी पुराने थे यार, इनकी जितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना उतनी हम कर नहीं रहे। इसी बात पर इनके गजल भी मुझे याद आ गई। क्या ख्याल है, जरा वो प्ले कर दूं मैं।

जनाब वैसे तो लोगों ने ये गाना सुना होगा लेकिन मेरे लिए जरा नया था तो मैंने प्ले कर दिया। अच्छा इस गाने पुराने वक्त की रिकॉर्डिंग में ना ये आप नोट कीजिएगा पट्टी कुछ ज्यादा टाइट हो जाती है लूप के साथ होता होगा ना तो जब वो टाइट हो जाए तो फिर ऐसी साउंड ऐसा लग रहा है गले पे किसी ने हाथ रख दिया।

0: ऐसा लग रहा है गले पे किसी ने हाथ रख दिया और फिर उसकी आवाज खिंचती हुई आ रही है। ये खूबसूरती थी पुराने गानों की।
1: बेताब हो उधर तुम,
0: कभी भी कुछ हो सकता है। तो पुप्पा जी
1: पल पल
0: आपको मैंने डेडिकेट किया। एंजॉय करें, मैसेजेस करें, किया चाहे स्पेस टेक्स करेंगे, सेंड करेंगे 3636। छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
2: This program is brought to you by Shogat Phanam Karachi Ki Takbir. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: Active. Yummy. Jorgo 7. Say I've got a crush on you. Ye pyaas to suno yaar.

है जनाब, बल्कि मैक सुन रहे हैं FM 100 और गाने में आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सारे मेलोडियस हों, मजे को बीच बीच में थोड़ा सा जरा मूड चेंज भी होना चाहिए। ये नहीं हो कि बिल्कुल ही सीरियस, आंखें लाल आंसू निकले में हो, ऐसा भी सीन नहीं हो। अच्छा जी, मेहनाज जी के आज गाने मैंने आपको पहले बता दिया था कि जरा दो तीन है। एक और उनका गाना मेहदी हसन साहब के साथ है, मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत गाना है, जरा चेक करें आप।

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जी वेलकम बैक और गयासुद्दीन बलबन भी आ गए हैं जहां मैं नाज जी का मैं गाना प्ले करता हूं गयासुद्दीन बलबन जो है ना फौरन मैसेज कर देते हैं डाई हार्ड फैन है तो भाई लाइव जो है परफॉर्मेंस सुन चुके हैं तो और भी ज्यादा जो है तो एक बात है जब आप लाइव किसी आर्टिस्ट को सुनते हैं ना तो जरा पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा होता अगर वो अच्छा गा ले तो और अगर वो बुरा गाए तो नफरत भी वैसे हो जाती है यार कि क्या किसको सुन रहा था ना अच्छा जनाब एंजेलिना कह रही किंग ये कौन से बिलावल हैं ये वो बिलावल हाउस वाले नहीं है ये हमारे जो है ना कौन से दो दरिया वाले भाई हैं ये आप मेरी बात समझ गए मैं आपने कौन सा कोई मुश्किल क्वेश्चन किया है कौन सा कोई अलजबरे का सवाल कर दिया एंजेलिना जी आराम से मैं समझ गया बिलावल दुनिया में और भी है अच्छा जनाब मेलोडियस मोहन सुरीले गाने मेहंदी हसन साहब की एक दफा फिर आवाज़

हाँ जनाब, इश्क सच्चा है, वादा निभाना होगा। आजकल ऐसा है कि नहीं है, इसका मैं नहीं पता। एंजेलिना के कह रही किंग नेक्स्ट शो में फास्ट सॉन्ग प्ले होंगे, आप फिक्र न करें एंजेलिना, मैं दौड़ते हुए गाने लगाऊंगा, तो तसल्ली रखें आप। अच्छा जनाब, क्या अच्छी बात की है हुमा जी ने, और वो मैं आपको एक मिनट बैकग्राउंड लगाते हैं। भाई कह रही है कि लिसनर्स और आरजे का रिश्ता भी ऐसा ही है जैसा इस सॉन्ग में है। पिछला जो गाना मैंने मैनाज जी का, दो प्यासे दिल एक हुए, उस गाने के बारे में कह रही है। क्या ठीक रही हैं आप हुमा जी, ऐसा ही है सीन। सीमा बाबर रानी, अस्सलाम वालेकुम मयास, कैसे हैं एफएम 100 के किंग। सीमा बाबर, बस आपका प्यार मोहब्बत है। पीर एम इलियास कह रहे हैं नैयर अनूर किधर है, इधर ही है, ये मेरे सामने है भैया, इनको भी प्ले करें प्लीज। आई होप सर आप तसल्ली रखें, बल्कि ये गाना जो है ना स्वीट सी। सुंदर जी हमें सुन रही हैं, तो सुंदर जी आपके लिए भी, इलियास भाई आपके लिए भी खूबसूरत ट्रैक।

वेलकम बैक जनाब, और सुन रहे हैं FM 100 आयाज अहमद के साथ बिलावल। कह रहे सर आजकल तो दिखावे की मोहब्बत है, प्यार है नहीं मेरे ख्याल से। सही कह रहे, चलो दिखावे की है, यही बहुत है आजकल। लोगों के दिखावे का भी टाइम नहीं है। खुश रहकर बिलावल में, खुश रहकर हर हाल में खुश रहना सीखो। पी रहे इलियास, कह रहे हैं अयाज भाई क्यूट से, और कह रहे हैं कि बलोच आइसक्रीम आपकी बनती है सर, आप खाने में आते आते यहाँ पिघल जाएगी सर, आप ही खा लें पूरी। लेकिन आपने पूछा, बड़ी मेहरबानी इलियास भाई, बहुत शुक्रिया। सीमा बाबर कह रही है जबरदस्त ब्यूटीफुल सॉन्ग, जब ओल्ड सॉन्ग्स प्ले करते हैं ना तो यादें ताजा हो जाती हैं। हर घर रेडियो की आवाजें आती थी। सीमा बाबर तिब्बत सेंटर रहती थी क्या, वहां था ना रेडियो स्टेशन पहले? लेकिन ये है कि हाँ, पहले वक्तों में रेडियो की आवाजें आती थी। मैं भी पता नहीं क्या बोल देता हूँ। अच्छा, वो मिसेस फारूक आ गई, ऑसम सॉन्ग, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, जरा टाइम जो है ना, जरा गुजर रहा तेजी से, पूरे पूरे गाने नहीं सुनाऊंगा, थोड़े थोड़े।

है, क्या जबरदस्त ट्रैक है। दुखी दिलों की झनकार, संजीदा जी कह रही है मैं जरा दुखी हो गई ये गाने सुन के। अरे नहीं करो यार। इसके अलावा मिसेस फारूक बहुत शुक्रिया आपका, इतने अच्छे तरीके से जो है ना आप अप्रिशिएट करती हैं और बंदे का हौसला बढ़ा देती हैं, क्या कहने। इसी बात पर मिसेस फारूक ये गाना आपके लिए।

है क्या बात है जनाब, टाइम जो है वो कह रहा है टाटा बाय बाय, क्योंकि इसके बाद नदीम अख्तर साहब तशरीफ ला चुके हैं। आज से बड़े पप्पू लग रहे हो, मैं क्या जबरदस्त। अच्छा भाई, अयाज भाई कराची के हीरो, माय बेस्ट विशेस विद यू, बड़ी मेहरबानी। नाम नहीं लिखा, कौन है भैया? बिलावल कह रहे हैं गुड शो, गुड नाइट। गुड नाइट जनाब, गुड नाइट। संजीदा जी आपका शुक्रिया, और मिसेस फारूक आपका शुक्रिया, जितने लोगों ने मुझे मैसेजेस किए उन सबका बहुत शुक्रिया। जाते जाते ये खूबसूरत सी गजल मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 9 to 11। अयाज अहमद को दें इजाजत, अल्लाह हाफिज, रब रखा, खुदा पामाना।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर, और सवाल मैंने पूछा है कि वो कौन सी चीज है जो कि आपके आगे होती है, आपके सामने होती है, मगर आपको नजर नहीं आती। ये सवाल का जवाब देना है। और मैंने बोला भी साई आएंगे तो मीठे चोल खामांगे, ये झोंक सयाल साहबजादा ने कहा है, जवाब दिया है। चले एक और डायलॉग। चक्कू है मेरे पास, चक्कू चक्कू चक्कू। तो ये कौन से ड्रामे का डायलॉग था, बहुत पॉपुलर। तो अभी हम आपको लेके जाएंगे एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक, जाने बैलो फड़ो।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो। चला आया यूके तो ये यूके कौन सा है, उमरकोट है या यूनाइटेड किंगडम है, ये भी एक सवाल है लेकिन इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं है। एनीवे जो सवाल किया हुआ उसके जवाब बड़े प्यारे से आए हैं जनाब, हमारी प्यारी सी बहना मिसेस फारूक नसीन पटेल की मैसेज। खामोश बहना ने आज जुबान खोली, जीती रहो मुस्कुराती रहो। और मेरी प्यारी सी बहन कह रही है अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू, और ड्रामा उन्होंने झोंक से हाल बिल्कुल दुरुस्त बता दिया। उसके बाद मैंने पूछा कि चक्कू है मेरे पास, चक्कू चक्कू, और कहती हैं कि झोंक से हाल इन्होंने देखा भी है और सुना भी है ये डायलॉग, क्या बात है, इसीलिए आपने फौरन बता दिया और साहबजादा साहब ने भी बता दिया, लेकिन चक्कू वाला भी आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया है। और ये शायद नहीं है यकीनन अंकल उर्फी एक ड्रामा था शकील साहब का, उसमें हमारे जमशेद अंसारी साहब उनका ये बड़ा मशहूर डायलॉग था, चक्कू है मेरे पास, और चक्कू कैसा था, बस छोटा सा चक्कू, लीमून भी ना कटे जिससे, ऐसा चाकू था। ड्रामा देखिएगा, बड़ा जबरदस्त ड्रामा है और यूट्यूब पर है, यानी कि समझ रहे ना आप। और आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानिब, और स्क्रॉल करना पड़ रहा है माजरत के साथ ताकि कोई मैसेज रह ना जाए आपका। और साहबजादा का लास्ट मैसेज आ झूक सयाल का, उसके बाद कह रही है अस्सलाम वालेकुम मैंने भाई कैसे हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, लाला को मुश्क और सब सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम कह रही है हिना गुल। वालेकुम अस्सलाम, अटा मोहम्मद डोडा भी आ गए हैं खाने वाल, कमल अता जुलेखा चाची, हम आपका शो, जुलेखा चाची हैं, हम आपका शो शौक से सुनते हैं। हाय लजी, थैंक यू, 1 से 3 बजे भी FM 100 में आपका शो सबसे अच्छा था, हाय सो स्वीट, और आप का बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, जीती रहे मुस्कुराती रहे, अल्लाह जी आपको सलामत रखे आमीन। बोलते ना हाय अल्लाह जी। और अता मोहम्मद डोडा और मेरी बहन कवल अता और हमारी चाची जुलेखा, कितना खूबसूरत नाम है यार जुलेखा, और मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा जुलेखा का, बड़ा जबरदस्त सा नाम तो सुना ही होगा आपने। तो खैर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम अपने इन लिसनर्स को गाना डेडिकेट करेंगे हाले ने थोड़ी देर के बाद। अने भाई अगर हो सके तो जावेद अख्तर साहब का कोई पश्तो गाना लाला के नाम कर दे, हिना गुल कह रही है लाला के नाम दो गाने हो रहे हैं तो एक गाना ही कर देंगे पश्तो का, आप दोनों की जानिब से अगर आप दोनों को एतराज ना हो तो। अजीम अजीम है वो औरत जो घंटों बुराइयां करके खाती है, अरे कहती है, खाती नहीं कहती है, घंटों बुराइयां करके कहती है कि अरे छोड़ो हमें क्या लेना देना। सलीम मेमन कह रहे भाई ये तो कुछ आ रहा है मेरे ख्याल में, क्या है ये। प्लेट में चाय गिर गई ऐसे लगा पराठा लेकर आया। गुफरान भाई दूर से ऐसा लग रहा था। वो आजकल बड़ी रील्स भी आ रही होंगी आप देख रहे होंगे कि कप को उल्टा करके उसमें चाय डालकर, अरे यार इतना बेवकूफ कोई भी नहीं होता है, ज्यादातर बनाई होती है मुझे ऐसा लगता है। हाँ भाई पराठा था, पराठा खाते हो,
1: पराठा बदला पानी।
0: और जनाब आगे बढ़ते हैं, सवाल का जवाब है हवा। वाह वाह वाह जबरदस्त, किसने बताया ये हवा जज्बात। अच्छा बहुत सारे जवाब दिए मेरी प्यारी सी बहन जरीन नूर का जवाब है, कह रही है जवाब है हवा जज्बात खुशी और उदासी जो नजर नहीं आती साथ होती है। जरीन नूर मेरी बहना कह रही है, मेरी बहना इसमें से बहुत चीजें ऐसी हैं जो नजर आ जाती हैं, हवा गो के नजर नहीं आती मगर हवा में अगर मिट्टी हो वो भी नजर आ जाती है, लेकिन जज्बात नजर आ जाते हैं, खुशी नजर आ जाती है, उदासी भी नजर आ जाती है, यानी कि समझ रहे हैं ना। हाँ तो आगे बढ़ते हैं जनाब। एने सवाल का जवाब है शायद हिना कह रही है कि हवा जो नजर नहीं आती है। सवाल हम अभी रिपीट करते हैं, दोबारा करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं। डॉट वरी डॉट वरी। अच्छा जी, एक सॉन्ग राहत फतेह अली खान का, तेरी आंखें आंखों के दरिया में हमें दोस्त, हमारे दोस्त हुज़ैफ़ा ने आपसे रिक्वेस्ट की थी, अगर हो सके तो चला दीजिएगा। सुने हो, सुने हो हुज़ैफ़ा भाई को हमने इतना अच्छा गाना डेडिकेट किया था। चले हम ढूंढते हैं ढूंढते हैं ढूंढते हैं। और यूसुफ भाई कह रहे हैं नदीम भाई ड्रामे का नाम था अंकल अनकही, एक्टर मिस्टर जमशेद अंसारी अनकही नहीं था, अंकल उर्फी था, वो बोला करते थे चक्कू है मेरे पास। चले एक और ड्रामा जबरदस्त, एक और ड्रामे का डायलॉग बड़ा मशहूर था, बहुत पॉपुलर हुआ था, बादशाह है बादशाह तू, बादशाह है बादशाह तू, पाकिस्तानी ड्रामे का डायलॉग था और एक्टर का नाम भी बता देता हूँ। चले आपको ड्रामे का नाम आपने बताना है, एक्टर थे इलियास कश्मीरी साहब, अब आप बताएंगे नाम इसका।

0: काम इसका।
1: हमारी नसरीन बहना, आप अगर बताएं तो क्या बात है, यानी कि समझ रही है ना। हाँ अयो लाला भी आ गया, अच्छा ने चेक कर गया हबीबी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। लाला कहाँ गायब रहते हो? अच्छा जी अमीन कह रहे हैं सलाम, मैंने भाई कैसे हैं? स्वीट खट्टी नमकीन फैमिली को चटपटा सा सलाम, हाय सो स्वीट मैसेज यार। और मुझे अमीन की जानिब से चार्ली को ही सॉन्ग डेडिकेट कर दे, अहमद जाजेब का कोई भी, बिल्कुल करेंगे, आप बड़ा जबरदस्त सा गाना डेडिकेट करेंगे, तुम देखना भाई। और लाला कहते हैं क्या आपको एस गुल को एच गुल को नहीं नहीं एस गुल ठीक है, हिना गुल का पूरा नाम लिखे, मुश को मानूर को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा पहला मेरे लिए सलाम और दुआ था मैसेज, दूसरा जो है लिसनर्स के लिए, अब तीसरा आएगा मुझे पता एक और चले इसी बात पर आपको लेकर चलते हैं एक और बहुत प्यारे सी जगह पर, यानी कि ब्रेक की जाने पर।

0: 247-265. FM 247-365.
1: वेलकम बैक सुनियो, और लेकर चाहते हैं आपको पसुड़ी की जानेब प्यारा सा गाना एलो फड़ो।

0: वेलकम बैक, सुने हो, बड़े दिनों के बाद सुना पसूरी। पसूरी का मतलब क्या है आपको पता है? किसी को जिसको नहीं पता वो बोले मुझे नहीं पता, जिसको पता है वो ना बताए, फिर मैं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानेब। और लाला का मैसेज हो गया था, नदीम भाई लाला के लिए अलग अलग सॉन्ग चलाइए ताकि जीबीएन खुश हो जाए। ओके। और आगे बढ़ते हैं, ये वाला मैसेज हो गया। हाँ, लाला का मैसेज आ गया, एस गुल को, मुश को, एच गुल को, महनूर को, एक जबरदस्त सा सॉन्ग, यानी के नाम लेकर तीन हो गए भाई। इलियास कश्मीरी फिल्म के एक्टर थे ये। हाँ यार साहब, ज्यादा क्या जबरदस्त बात बताई, मेरे मुंह से इलियास कश्मीरी निकला, आबिद कश्मीरी, सॉरी भाई, वो जो था ना बादशाह है बादशाह तू, वो जो है आबिद कश्मीरी साहब थे, ड्रामा आर्टिस्ट। यार क्या साहबजादा साहब, आपकी तो क्या नॉलेज है यार फिल्मों के बारे में, एक्टरों के बारे में जबरदस्त। और आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया भाई, मैं माजरत चाहता हूँ और थैंक यू वेरी मच साहबजादा साहब। आबिद कश्मीरी, तो आप नाम भी बता दो कौन सा ड्रामा था, बादशाह है बादशाह तू। अच्छा जी, अयूब आफरीदी सिस्टर नौरीन और संजू को आफियत की अनगिनत दुआओं और सलाम। वालेकुम अस्सलाम, लाला को सलाम। गुफरान भाई आए हैं आज, उनसे थोड़ी मस्ती करने वाले हैं, उनके आने से शो में चार चांद लग जाते हैं। सलीम मेहमान कह रहे हैं, लेकिन गुफरान भाई गायब हो चुके हैं। हमारी प्यारी सी बहन नसीन पटेल कह रही है, सॉरी ये नहीं पता कौन सा ड्रामा था। मेरी बहन, नो प्रॉब्लम, थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको इसका जवाब सुनेंगी आपको बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा आप। और शुक्रिया अदा किया है हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब ने उनका मैसेज पढ़ने पर, कह रहे प्रोग्राम के आखिर में चला दीजिएगा सज्जाद अली का एक गाना, चला देंगे। नौरीन बहन अभी आ गए हैं, कह रही है सलाम अलैकुम नदीम भाई, कैसे मिजाज शरीफ है, ढेरों दुआएं। इस पहेली का दुरुस्त जवाब है जो हमारे सामने होता है और हमें नजर नहीं आता। अरे क्या बात है यार, दुरुस्त जवाब आ गया। हाँ, गुफरान ने भी सही जवाब बता दिया। गुफरान भी कितने शरारती हैं आप। अच्छा, झोंक से यार ड्रामे का डायलॉग था, अंकल उर्फी के ड्रामे का डायलॉग था, अब तीसरा जो बताया वो भी बताएं। हाँ सही कह रहे हैं आप, आइए जरा आप आइए, तशरीफ रखिए, आपके बारे में अभी सलीम मेमन क्या कह रहा है ये देखें, ये देखें। चाय अच्छी बनाइए यार, सुन लिया। अच्छा जी, जिंदगी इतनी तो समझ में आने लगी है कि बातें दिल में रखने से रिश्ते खोखले हो जाते हैं और बातें कह देने से रिश्ते टूट जाते हैं। मेरे पास अब खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं है, मैं बात करती हूँ तो बात बिगड़ जाती है, लोग मेरी बात नहीं मानते, हाँ मगर बात का बुरा जरूर मान जाते हैं, जिससे रिश्ते इख्तिताम की तरफ मुड़ जाते हैं। अरे कितने अच्छे हैं आप, हाँ बहुत अच्छे हैं आप गुफरान भाई। भाई सलीम मेमन, सलीम मेमन ने तारीफ भी इसीलिए की है।
1: सर बात बिगड़ जाती है तो उसके ऊपर गाना भी बना हुआ है।
0: क्या जब कोई बात बिगड़ जाए, वो तो यहाँ का नहीं है, वो वहाँ का बिगड़ा हुआ है। अच्छा आपको ये भी बता दूँ, ये गाना जो है वो एक कॉपी है इंग्लिश गाने की, ला ला ला ला ला ला ला ला, मैं इसका बल्कि वो निकाल, आप निकालें गाना सुनाएंगे लोगों को, इंग्लिश गाना
1: आप मुझे बताएं कौन सा गाना,
0: बता दिया ना मैंने, जब कोई बात बिगड़ जाए इंग्लिश ओरिजिनल ट्रैक लिख दो साथ में। यानी कि थैंक यू गुफरान भाई, यार सैल्यूट है आपको यार, ओके ठीक है आप, लव यू, थैंक यू
1: जी। ये गाना वही है
0: हाँ,
1: लेकिन नाम ओरिजिनल नाम इसका ये गाना
0: है। अरे भाई फिर तो मेरे पास होगा ये जरूरी। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
1: एक्चुअली
0: होता कुछ ये है गुफरान भाई कि हमारे प्यारे प्यारे से लिसनर्स जो हैं वो गाना जब सुनते हैं पसंद आता है तो वो बीच में से कोई ना कोई उसका वर्ड्स जो होता है वो लिख देते हैं, और हम पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं, जबकि गाने का टाइटल से अगर ढूंढा जाए तो फौरन मिल जाता है।

थैंक यू गुफरान भाई। तो जिना मैं बता रहा था टाइटल के हवाले से, तो जो भी सॉन्ग आप सुनना चाहें और उसकी फरमाइश कर रहे हैं तो उसके टाइटल अगर दुरुस्त बताएंगे ना तो यकीन माने कि ढूंढने में बहुत आसानी होगी। हमारे सलीम मेमन और उजैफा के लिए गाना ढूंढ रहे थे हम, टाइटल कुछ और निकला। सलीम मेमन, सारे काम आपके जो है ना बीच से शुरू होते हैं। अच्छा जी, नरीन बैना का मैसेज, जब वक्त मिले तो खुशी से जी लिया करें क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं। इतने जज्बाती किस्म के मैसेज हो रहे हैं यार, फुल टाइम वक्त नहीं कुछ खुशियां था, गलत फहमी की भेंट चढ़ जाती, चढ़कर वक्त के बेरहम हाथों से मर जाती हैं। हाय अल्लाह जी, इतने गाछी वाले मैसेज नहीं पढ़ूंगा आज मैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा, चर्चा करूंगा तो खुद भी उदास हो जाऊंगा। जियो लाला चला है यूके, तो जबरदस्त गाना लगाया उनको नदीम भाई, जिंदाबाद भाई। अगले गाने भी अच्छे लगेंगे आपको, बहुत बहुत अच्छा लगेगा भाई। मिर्जा साहब, मोश कहती हैं ये भी अच्छा सॉन्ग है, यूके म्यूजिक डायलॉग तो सुने, ड्रामे के नाम याद नहीं है। अरे मेरा बच्चा मोश, तुम्हें कहां से याद होंगे, तुम यकीन मानो हमें इनमें से कुछ ड्रामों की होश ही नहीं है, तो आप तो छोटी हैं, ये जेंजीज हैं, यानी कि समझ रही है ना आप। इस तरह तो होता है, इस तरह के काम हमें। यार एक और गाने की जानब चलते हैं, तो एक और जरा पंजाबी टाइप का गाना हो जाए, थोड़ा जहा हले गुले टाइप का, हैं जी ते हैं जी, नसीबो एलो फड़ो।

वेलकम बैक। तू मिले कभी कभी सबाब की है, तुम मिलो कभी कभी, वजह क्या है? इसका उर्दू में तर्जुमा था। खैर जी, मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर, उनकी जानिब बढ़ते हैं। और लाला का मैसेज हो गया, ये भी हो गया। नदीम भाई आपने नदीम भाई नहीं पता, आप बताएं। एसगुल बच्चा क्या नहीं पता तुमको, ये भी बताओ। नदीम भाई ड्रामा जहन में है, नाम याद नहीं आ रहा। ये बहुत आसान सा नाम है। ओ गुल्लू बादशाह, अब याद आया, बादशाह बादशाह तू। नवीद भाई आ गए हैं। नदीम आपका छोटा भाई भाई सुन रहा है, शकील भी सुन रहे हैं। अच्छा आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, उसके एंट्री करने पड़ेंगे। ये हमारे सलीम मेमन ने मैसेज किया है कि हमारे छोटे भाई नवीद साहब भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और शकील साहब भी सुन रहे हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया नवीद और शकील आपका। और अब जो है सुने हो, सॉन्ग मिल गया गुफरान भाई को जैफा के लिए, वो आपका शो सुन रहे हैं। मिल गया भैया, चल जाएगा यार, चल जाएगा, क्यों परेशान हो। और जिगर आपके शो में शरारती लोग आप समेत मुझे बहुत पसंद है, गुफरान भाई को सलाम। अच्छा गुफरान भाई आज मजरूफ है, तंग भी नहीं कर रहा मुझे, और उन तक सलाम आपका पहुंचा देंगे। आज गुफरान भाई को बहुत से लोग पूछ रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लाला भी कह रहे हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में जो लोग नस नस में समाये होते हैं नदीम भाई, वो अचानक नस नस क्यों जाते हैं? आज ये पूछते हैं मैंने आपसे। अच्छा अब इनका मैसेज आप लोगों को समझाता हूँ पहले, जिस पर मैंने कहा लगाया, कह रही है जो लोग नस नस में समाये होते हैं नदीम भाई, वो अचानक नस क्यों जाते हैं? अब ये दूसरा जो नस क्यों जाते हैं ना, ये है पंजाबी का वर्ड, इसका मतलब है भाग क्यों जाते हैं। वो इस वजह से नस जाते हैं कि वो हमें वड वड जाते हैं। अब आप बताइए इसका मतलब। नरीन बहना ये जिंदगी है, गोल मटोल जिंदगी है, आप यकीन मानिए ऐसा ही होता है। कुछ ऐसे हम जिंदगी में अमल कर लेते हैं कि वो अमल अनजाने में होते हैं, या अनजाने में बुरे अमल होते हैं वो, ठीक है, ये जरा ज़हन में रखिएगा, अनजाने में बुरे अमल होते हैं। तो वो अमल शायद हमारे सामने नहीं आते, लेकिन जानबूझकर बुरे अमल अगर हम करें तो वो जिंदगी में लौट कर सामने जरूर आते हैं, ये ध्यान में रखिए। अब मैंने जो पहला लफ्ज किया, मैंने कहा कि अनजाने में जो बुरा अमल इंसान कर ले, तो इसके हवाले से ये है कि वो अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि वो गुनाह जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि अल्लाह ने मना फरमाया हुआ है, नबी ने मना फरमाया हुआ है, और वो आप कर रहे हैं, छोटे मोटे गुनाहों की बात कर रहा हूं, तो गुनाह सगीरा की बात कर रहा हूं, तो अब आपको जब पता चला तो आपने ये में से क्या क्या हो गया, तो उस पर यह है कि माफी है अल्लाह के नजदीक। लेकिन पता चलने के बाद भी अगर आप वही अमल कर रहे हैं तो फिर तो ज्यादा सजा है, एक नहीं दो लितर ने फिर। तो खैर ये जिंदगी है, घूम फिर कर इसी तरह चल रही होती है। और मिर्जा साहब कहते पे ना, यार नदीम भाई तुसी ग्रेट हो, लव यू नदीम भरा। ओ यार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी प्यारी सी बेटा फरीदा बुरहानुद्दीन भी आ गई है, कह रही है सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सवाल का जवाब है एयर यानी कि हवा और आंखों की पलके। खूब जवाब दिया फरीदा बुरहानुद्दीन, आंखों की पलके वो तो नजर भी आ जाती हैं, गौर करो तो नजर आती है वैसे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसी बात पे हम एक गाने की जानी जा रहे हैं। यार ये वैसे हुज़ैफ़ा भाई ने जो गाना गाया है बड़ा सुस्त सा गाना है, स्लो सा गाना है, तो वो हम बाद में चलाएंगे। फिलहाल हम एक पख्तों संदरा का जानिब जाता है, और ये पख्तों संदरा मयूब लाला की जानिब से, जो हमको बोलते जाने जिगर।
उनकी जानेब से हम डेडिकेट करेगा एस गुल को, एच गुल को, मुश्क को और आप सबको एल्बो फड़ो।

0: Welcome back, Sony. Oh, Golden Dana. देर आपको लसंदारा दे
1: योबले लेता आपको कैसा लगी ये जरा मेरा को बता
0: आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानिब जल्दी से जल्दी और सलाम नदीम सजाद अली का सॉन्ग सुना दें प्लीज ये कह रही है अफशा सुनाएंगे और आगे बढ़ते हैं जनाब मेरा मैसेज नहीं पढ़ा जाएगा मैं भी एने भी होप कि आप रीड कर लेंगे और जी पढ़ रहा हूं मैं फुल टाइम इतना अच्छा मैसेज किया आपने और लाला को मेरी जानिब से बहुत बहुत सलाम कीजिएगा आपने अपना नाम नहीं लिखा ये तो गलत हो गया लेकिन मैंने आपका मैसेज फिर भी पढ़ लिया तो आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया क्योंकि पहले ही लिखा था मेरा मैसेज नहीं पढ़ेंगे लेकिन मैंने पढ़ लिया अपना नाम भी लिख दिया करें और सलाम के बाद कह रहे हैं कि यूसुफ एम यूसुफ नेम्स बात कर रहा हूं नुमाइश में रहता हूं वाह वाह वाह वाह नदीम भाई रोजाना आपको सुनता हूं आपके कॉमेडी सुनकर सारी टेंशन दूर हो जाती है यकीन मानिए मोहम्मद यूसुफ नईम साहब कोई कॉमेडी नहीं होती आप लोगों से बातचीत होती है हल्की फुल्की बस इधर उधर की बात हो जाती है और कोशिश यही होती है यार आप लोगों की टेंशन जो है वो दूर हो जाए बल्कि मैंने तो अब चर्चा करना छोड़ रहा हूं मैं जब चर्चा करता हूं तो खुद ही सीरियस हो जाता हूं मैंने अब नोट किया ये बात ज्यादा चर्चा ही नहीं करनी अगर की भी तो प्रोग्राम के आखिर में यानी कि समझ रहे हैं ना आप अच्छा जी आगे बढ़ते हैं इनके मैसेज की जाने और दूर हो जाती है आपकी वॉइस बहुत अच्छी है संजीदा बाजी मुश्क चाची कायनात शो की रौनक है कायनात कहां से आ गई वो तो चली गई बस नाम नहीं लिया करें अब और एक गाना नदीम भाई और अयाज भाई को डेडिकेट कर दीजिएगा आई लव यू नदीम भाई अयाज भाई मुझे याद रखिएगा आरा भाई मोहम्मद यूसुफ नईम साहब आपको बिल्कुल याद रखेंगे पक्का याद रखेंगे आपको गाना भी डेडिकेट करेंगे आबिद कश्मीरी साहब बहुत काम किया है हर ड्रामे में उनकी कोई ना कोई कंटिन्यूटी होती थी जैसे कि बात समझ आ गई जैसे कि बात समझ में आ गई साहब ज्यादा साहब कह रहे हैं बिल्कुल आपने सही कहा खैर जी उस ड्रामे का नाम बता देता हूं मैं वो ड्रामा जो था वो हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद
2: FM 100's time check. It's 12 midnight.

0: 265. FM 247-365. वेलकम बैक कहेंगे जनाब. हम साहबजादा का मैसेज पढ़ रहे थे और उन्होंने आबद कश्मीरी साहब की जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त बात की है. हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट. तो खैर जी, वो ड्रामा जो था गुल्लू बादशाह उनके करेक्टर का नाम था. ड्रामा था समंदर. समंदर समंदर बहुत ही पॉपुलर ड्रामा था अपने दौर का. और हो सके तो देखिएगा ड्रामा लवर्स जो हैं. अयूब लाला कह रहे हैं गुड सॉन्ग. महानूर का नाम लेना भूल गया था लिखना. कोई बात नहीं, हम महानूर को भी डेडिकेट कर रहे हैं. महानूर ये गाना आपके लिए भी था. नदीम भाई आपके शो को कितने साल हो गए. एस गुल कह रही है
1: यही कोई मेरा ख्याल है तकरीबन 2-4 साल हो गए.
0: नहीं माशाल्लाह से मुझे एफएम में आते हुए 17 साल से ज्यादा हो चुका है. 17 ईयर्स से ज्यादा
1: कम नहीं है, ज्यादा ही है.
0: और सर जी यहाँ से कॉल लग रही है, आप लोग पिक नहीं कर रहे हैं. आई एम योर साइलेंट लिसनर जजा रहमान कोरंगी से. भाई जजा भाई कॉल नहीं लगेगी. वहां से आपको ऐसा लग रहा होगा कि कॉल लग रही है मगर नहीं लग रही होती, वरना हम यहाँ पर रिसीव कर रहे होते. हाय यार क्या याद दिला दिया जजा भाई आपने. लेकिन हम आपको याद रखेंगे जजा भाई. इसी तरह कभी कभी मैसेज कर दिया करें. हैं जी ते हैं जी. और एक और मैसेज पढ़ेंगे उसके बाद आपको गाने की जानकारी लेके जाएंगे. एक मैं नाम बहुत देर से नहीं ले रहा हूं तो मैं उस नाम का, बल्कि ऐसा करूंगा कि जब मैं ट्रैक चलाऊंगा डेडिकेट भी करूंगा उनको. आप लोग बताएंगे कि मैंने किसको डेडिकेट किया है. और अमीन कह रहे मेरा मैसेज नहीं पढ़ा जाएगा. एने भाई, अच्छा वो आप थे एने भाई. आई होप ये रीड करेंगे. बिल्कुल कर रहे हैं यार, रीड क्या करेंगे, पहले भी रीड किया था. अमीन बिल्कुल सही कह रहे हो. ये देखा ना यार, नाम आ गया ना तो पता चल गया यार अपना बच्चा है कोई, अपना बंदा है कोई जिसने मैसेज किया है. और अपने ख्यालात का इजहार किया, आपके ख्यालात का इजहार जो है हम आगे तक पहुंचा देंगे. दुरुस्त फरमाया आपने. और अब जो है जनाब हमने गाने की जानिब जाना है. मैसेजेस तो आपके माशाल्लाह से आ ही रहे हैं और नेक्स्ट लिंक में हम मैसेंजर्स के मैसेजेस भी पढ़ेंगे. यानी कि समझ रहे हैं ना. हाँ तो जनाब ये ट्रैक मैं डेडिकेट कर रहा हूं कि एक नाम जो है जो मैंने खुद से अभी नहीं लिया उनको ये ट्रैक डेडिकेट कर रहा हूं. आप लोगों ने बताना है गाना सुनकर उसके बोल भी सुनकर कि मैंने ये गाना किसको डेडिकेट किया है. तो एलो फड़ो

वेलकम बैक। हाँ जी जनाब, ब्यूटीफुल ट्रैक एंड वेरी गुड। एसगुल का मैसेज है, ये सॉन्ग आपने संजीदा अभी के लिए लगाया है। बिल्कुल सही कहा। संजू कहाँ गायब है भैया? वो सो गई थी भाई, तबीयत ठीक है तारी। खैर जी, हमने संजू को मैसेज, मैंने ये ट्रैक डेडिकेट किया और अभी जरीन गुल ने नहीं किया।

जनाब ये भी मैसेज हो गया, ये वाला मैसेज नहीं हुआ। नदीम भाई आपको मोटोरोला का मतलब पता है? देखिए मोटो जो है वो कहते हैं मोटे को, और रोला कहते हैं जो शोर डालता है, तो मोटा इंसान जो शोर मचाता है उसको कहते हैं मोटोरोला। बताता हूँ, इटालियन में मोटो फोन को बोलते हैं रोला, घूमने को फिरने को मतलब घूमने फिरने वाला फोन। वैसे मैं तो मजाक कर रहा था, आपने सीरियस बता दिया, जबरदस्त यार। तो इटालियन में मोटोरोला मींस घूमने फिरने वाला फोन, मोबाइल फोन। और सर जी मैं गर्ल हूँ, जजा रहमान, जजा ओके टेक है, जीती रहो मुस्कुराती रहो, करंगी से जजा। और यूसुफ बात के हूँ, नदीम भाई आपने क्वेश्चन किया था सॉन्ग में मेरा नाम लेकर, नदीम भाई आप और अयाज भाई को डेडिकेट कर दिया है सॉन्ग। और यूसुफ भाई जी, अच्छा आपका नाम जो है ना यूसुफ भाई, हम पूरा लेंगे यूसुफ नईम साहब, क्योंकि हमारे एक और भाई हैं, आप हैं मोहम्मद यूसुफ नईम, और हमारे एक और यूसुफ भाई हैं वो पापोश से आते हैं, तो आप यूसुफ नईम पूरा लिखा करें कि हमें पता चल जाए कि कौन से यूसुफ साहब है, यानी कि समझ रहे ना भाई। दो तीन मैसेज और पढ़ेंगे और उसके बाद फौरन जो है गाने की जानिब जाएंगे, बहुत सारी फरमाइशें जमा है। अरे मेरे दिमाग में भी समंदर ही ड्रामा था, बता ही देती। वैसे आपने पहले भी जो आपके जहन में ड्रामा था और आपने आगे शायद ही लिख दिया था वो भी दुरुस्त था, अंकल उर्फी। और चार पांच दोस्तों की कहानी थी, जबरदस्त ड्रामा था। खैर मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग याद नहीं है, बट इतना याद है कि बहुत बहुत मशहूर ड्रामा था ये वो जो है ना अपने दौर के सुपर डुपर हिट ड्रामा था। वड वड जाते हैं, काट काट जाते हैं, मतलब मिर्जा साहब वाह वाह जबरदस्त, क्या पश्तो मिक्सचर सॉन्ग चलाया आपने, मैशअप था भाई, कुर्बान लो शेलो शेदा शोखान। मुझे लगता है ये सॉन्ग आपने अरूसा बहन को डेडिकेट किया है, नहीं ये हमने संजू को किया था, अल्लाह करे आ जाए तू, तो आप गलत हो गए, एस गुल जो है वो दुरुस्त साबित हुई है, यानी कि समझ आए ना आप, हैं जी ते हैं जी, क्यों ना। अच्छा अरे भाई दुबई से भी मैसेज आया है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, जीती रहे मुस्कुराती रहे। ये बहुत देर पहले मैसेज आया था, मैंने अभी पढ़ा, खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। हाँ देखा ना, हम दोनों बहन भाइयों को याद नहीं है, नसीन पटेल को भी सही तरह याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि बस बादशाह है बादशाह तू है जी इतने हैं जी। अच्छा भाई अभी हम एक ट्रैक की जानिब जाते हैं और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे अमीन जो है, उन्होंने कहा था कि नदीम भाई अगर अहमद जानजेब का हो जाए अमीन की जानिब से चार्ली को डेडिकेट करूंगा, लेकिन मैं अपनी जानिब से अमीन और चार्ली दोनों को डेडिकेट करूंगा। और ये ट्रैक जो है ये मैशअप ट्रैक है, मैशअप तो नहीं कहूंगा इसको, ये ट्रैक जो है कवर्ड भी नहीं कहूंगा इसको, ये एक बेसिकली ट्रैक जो है वो है स्ट्रिंग्स का गाना, गाने का टाइटल है दूर, और स्ट्रिंग्स ने ही गाया है, बट एक शो में जो है वो स्ट्रिंग्स के साथ जो है मर्च हुए अहमद जानजेब, और इन्होंने मिलकर यही गाना गाया, लेकिन क्या चार चांद लगाए हैं यार इस गाने को, तो ब्यूटीफुल ट्रैक। ये अमीन और चार्ली दोनों को डेडिकेट कर रहे हैं, एल्लो फड़ो। सुनिएगा आप, मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा, मैं अपने शो में बहुत पहले भी चला चुका हूं।

अच्छा जी, बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। और जनाब नदीम भाई, मेरा नाम तो लिया करो, ये है हमारे साहबजादा साहब, साहबजादा साहब, मेरा ख्याल है मैंने आपके तमाम मैसेजेस में नाम लिया मां सिवाय शायद मोटरोला वाला, ये जो मैसेज था जिसमें मैंने कहा कि मोटा आदमी जो ज्यादा शोर मचाता है उसको मोटरोला कहते हैं, जबकि इटालियन में इसको मोबाइल फोन कहते हैं, यानी कि चलता फिरता फोन। ये साहबजादा साहब ने हमें बताया था। साहबजादा साहब, अब तो आप नाराज नहीं है, जरा मुझे बता दीजिएगा, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बता दें जना, मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने। सवाल मैंने एक फ्लोट किया था जिसका जवाब सिर्फ एक दुरुस्त आया है, और वो मेरी प्यारी जी मैं नौरीन तौसीफ ने बताया है। सवाल ये था कि आपने ये बताना है कि वो कौन सी चीज है जो कि हमारे आगे है, हमारे सामने है, लेकिन हमें नजर नहीं आती। कोई हवा बता रहा है, हवा में से ज्यादा बता रहा है। और जनाब इरफान जावेद साहब, आपने मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया। शहनाज अरूज, निगार कुरैशी, कलीम हुसैन साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मैसेज किया। अब सिलसिलाकार कुछ ऐसा है कि वक्त थोड़ा सा फुर्र करके उठ रहा है और डेडिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, तो अब थोड़ा सा राउंड भी चेंज करेंगे। राउंड इस तरह चेंज करेंगे कि अब गाने जो हैं जिस तरीके से जिस टेम्पो से चल रहे थे, अब टेम्पो से कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह सिलसिला जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट ही ऐसी है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है, छोटा सा ट्रैक है, दो मिनट का, ये हम कोरंगी से जिजा सुन रही हैं, उनको डेडिकेट करेंगे और जितने भी जेंजीज हैं उन सबको डेडिकेट करेंगे। हेलो फड़ो

वेलकम बैक सोने तेरे इरादे। वैसे पता है तुम्हें तेरे इरादे क्यों गाया इसने ये तेरे इरादे। खैर ब्यूटीफुल ट्रैक था जनाब और मुझे पूरा यकीन है अब्दुल हन्नान का ये ट्रैक था जहां जी वजह शोहरत अब्दुल हन्नान की इस ट्रैक से हुई और वो पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनको अब सुना जाता है अब्दुल हन्नान साहब। इनका एक और गाना बड़ा यार कुक स्टूडियो का मशहूर हुआ था काविश के साथ वो भी काफी मशहूर हुआ था। खैर इनके और भी गाने बड़े अच्छे हैं अब्दुल हन्नान साहब को जरूर सुनिएगा। जेंजीज को तो खैर पता है इनके बारे में लेकिन हम जैसे को नहीं पता। और जनाब इसके साथ ही हम बढ़ते हैं एक और ट्रैक की जानिब और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे एस गुल की जानिब से अयूब लाला को। एलो पकड़ो

0: वेलकम बैक।
1: गानों पे गाने डेडिकेट हो रहे हैं और मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आ रहे होंगे। गुफरान भाई मेरे सामने मौजूद है। गुफरान भाई आप बताएंगे कि इस तरह कौन बात करता है, ये अंदाज किसका है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी जो है ये एक ऐसे भाषा की है,
0: इस तरह का स्टोरी बता रहा था।
1: बहुत जबरदस्त वो है

0: जर्नलिस्ट आर, थैंक यू कहा है जनाब सबा गुल ने और नौरीन मैना क्या कह रही हैं? लाला जी को मेरी तरफ से भी वालेकुम अस्सलाम और ढेरों दुआएं दे दीजिए। बिल्कुल दे देंगे जनाब, डोंट वरी डोंट वरी। सवाल मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ और सवाल मैंने ये किया है, बताएं वो कौन सी चीज है। आप हंस क्यों रहे, सवाल तो बोल लेने। वो कौन सी चीज है जो हमारे आगे आगे चलती लेकिन हमको नजर नहीं आती, बताया है फरहान भाई।
1: आगे चलने वाली चीज तो सबको ही दिखती है।
0: नहीं वो
1: दिख जाती है,
0: नहीं दिख रही होती है। यार जी इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शाम। अब जाहिर है यार मैं इतनी बातें की है आप लोगों से, लेकिन आप लोगों की फरमाइशें भी तो यानी कि समझ रहे ना पूरी करनी है। तो भाई अभी जो है वो हम किसकी फरमाइश पूरी करेंगे, एक मिनट रुक जाइएगा मुझे गाना चलाने दे। भाई अभी हम ट्रैक जो है वो आयशा जो है, मेरा ख्याल है आयशा ही जानता है बहन का। नहीं नहीं नहीं भाई, अफशा ने फरमाइश की थी हमें और अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब ने कहा था सज्जाद अली की आवाज में अगर एक और, यानी कि समझ रहे ना आप, तो सज्जाद भाई की आवाज जल्लो फड़ो।

वेलकम बैक। कुछ लड़कियां देखे मुझे मुझे तंग करें इस प्यार से। गुफरान भाई शरारतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अच्छा जी नदीम भाई मेरा नाम तो लिया करें। अच्छा ये मैंने दोबारा मैसेज पढ़ लिया साहबजादा साहब का। मैं शो करूं या गौर करूं ये बताओ। और जनाब ट्रैक आपने सुना और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं जनाब मेरे सवाल की जानिब। और हमारी प्यारी सी बहन नौरीन दौसीफ ने इसका दुरुस्त जवाब दिया था और उन्होंने जो जवाब दिया था वही जवाब जो है पहली का आपके सामने रखते हैं। मैंने सवाल आपसे ये किया था कि आप ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो हमारे सामने होती है हमारे आगे होती है मगर हमें नजर नहीं आती। तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है जनाब, वो है हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर, जो कि हमारे सामने होता है हमारे आगे होता है मगर हमें जाने के समझ रहे हैं ना नजर नहीं आता मुस्तकबिल। और ये सिर्फ मुस्तकबिल का हाल जो है वो रब ताला की जात पाक जो है वही जानती है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। ड्रामों के हवाले से बात कर रहा था उस पर किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया या अब कौन सा ड्रामा जो है, बल्कि हम कल के शो में ये हम एक टॉपिक रखेंगे ड्रामों के हवाले से कि आपका फेवरेट ड्रामा जो है फेवरेट थ्री ड्रामे थ्री एरास के बताएंगे आप। कल ये हो गया भाई सवाल है जी ते हैं जी। अच्छा भाई हमारे अता मोहम्मद डोडा साहब कमल अता और जुलेखा चाची जो हैं वो भी सुन रहे हैं और उनको हम एक ट्रैक डेडिकेट करें। उनके साथ साथ हमारे सिंध में रहने वाले जितने भी वासी हैं हम उन सबको डेडिकेट करेंगे। साईं येल्लो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको टेने टेने। और ये सवाल आप पहले भी पूछ चुके हैं। अरे मेरी बहना नौरीन बहना कह रही है कि आप पहले भी पूछ चुके हैं। आप असल में सब जवाबों को इंटरेस्ट से सुनती हैं और उनका जवाब भी बता दी है, दुरुस्त बता दी है माशाल्लाह से, इसलिए आपको ये बात याद ही है। लेकिन आप यकीन मानिए कि हमारे जितने भी लिसनर्स ये जनरल नॉलेज की जितनी भी बातें होती हैं उन पर गौर ही नहीं फरमा रहे होते। और यार मैं कुछ पूछ रही है यार, इस दी कोई वजह होगी भाई। यकीन माने कि जितने भी सवाल ऑलमोस्ट तकरीबन मैं एक काफी अरसे से जो है वो सवाल कर रहा हूं और आप देते हैं उसका जवाब। तो अगर कितने अरसे से यानी कई सालों से ऐसा सिलसिला चल रहा है, तो अगर आप सिर्फ वो सवाल और उनके जवाब लिख लेते ना तो यानी कि समझ रहे हैं ना आप, जनरल नॉलेज में बहुत इजाफा हो चुका होता। खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? और अलीमुद्दीन साहब क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, शुक्रिया अदा किया उन्होंने कि भाई आपने गाना सुना दिया। लेकिन जी इस तरह तो होता है इस तरह के कामों, आप लोगों की फरमाइशें बहुत है तो मैं चाह रहा हूं कि वो सारी पूरी हो जाए। तो अभी हम जाएंगे जनाब हुजैफा साहब, एमपीए साहब के साहबजादे हैं, आपको पता है ये बात। हुजैफा सलीम मेमन के दोस्त हैं बड़े अच्छे, और सलीम मेमन और उनके साथ साथ जो है शकील साहब भी सुन रहे हैं, तो इन तीनों ने फरमाइश की थी। क्या कर रहा है भाई? सरकारी नौकरी जो है वो सलीम मेमन खुद नहीं हासिल कर ले, हुजैफा जरा बताइएगा, इस पर रोशनी डालिएगा। फिलहाल आप इस गाने पे रोशनी डालें, आपके लिए डेडिकेट किया जा रहा है। एलो फड़ो

वेलकम बैक आएंगे सोने। जरूरी था, इतना स्लो गाना था ये मोहब्बतों वाला, आंखों से उतरना भी जरूरी था, लेकिन गाना बड़ा जबरदस्त। राहत फतेह अली साहब की आवाज, और उम्मीद करता हूं कि जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको पसंद आया होगा। और आप ये देखेंगे फरमाइशें, कितनी मोहब्बत करता हूं मैं आप सबसे, ये आप सबकी फरमाइशें। अच्छा वो जीजा मैंने बोल दिया था, वो जजा था, जजा रहमान, जिनको गाना डेडिकेट किया था जेन ज़ीज़ वाला, नाम भी दुरुस्त कर दिया हमने। तो आप लोगों की फरमाइशें भी ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं, बस एक मेरी प्यारी सी बहन एच गुल का एक ट्रैक डेडिकेट करना बाकी है, और उसके साथ साथ एक ट्रैक मैं अब, क्योंकि वो मुझे एक मैसेज आया था, मैंने ट्रैक डेडिकेट किया था, तो भाई मैंने पूछा था कि किसका है, तो मिर्जा साहब ने कहा था अरूसा बहन के लिए, तो अरूसा बहन मुझे याद दिला दी आपने मेरी प्यारी सी बहना, तो अरूसा बहन को हम एक ट्रैक डेडिकेट करेंगे। उसके साथ साथ हमारी प्यारी सी बहन जो है नसरीन पटेल, वो भी सुन रही है, तो उन दोनों बहनों को ये मेरी जानिब से एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे। वन लव ब्यूटीफुल ट्रैक, और ये बैंड का नाम था जनाब ब्लू, अपने दौर का बेहतरीन ट्रैक, और मेरी बहन अरूसा को ये ट्रैक बड़ा पसंद है, सो दैट्स व्हाई मैंने उनको भी और हमारी प्यारी सी बहन रसीन पटेल को भी ये डेडिकेट किया, और उन्होंने थैंक्स का मैसेज भी कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। जनरल नॉलेज का एक सवाल किया था, उसका दिया आप लोगों ने जवाब। शुरू में हमने थोड़ा सा हल्ला गुल्ला जारी रखा था, लेकिन बाद में जाहिर है आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन ही चली, यानी कि समझ रहे ना। और अब आखिर में जो है हमने एक ट्रैक डेडिकेट करना है, वो हमारी एच गुल की जानिब से लाला को, एंड उसके साथ साथ मैं अपनी जानिब से हमारे प्यारे से शहजादे भाई साहबजादा साहब को भी ये डेडिकेट करूंगा। जावेद अख्तर साहब की आवाज में ट्रैक है, शारे आफाक ट्रैक उनका, पिशावर से मेरी खातिर दंदाजा लाना। इसके साथ ही सलाम, मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल ओल्डी गोल्डी क्लासिक में। अल्लाह हाफिज़।

में कैसा नशा है, गाल पे उसके तिल का निशान है। ये तिल का निशान तो मार गया छन्नों के चक्कर में, पहले बिल्लों के चक्कर में और फिर बिल्लों छन्नों के चक्कर में। ये चक्कर ही चक्कर, तो कभी छन्नों कभी बिल्लों कभी कोई, तो कभी कोई तो कभी कोई। खैर जनाब, जिंदगी इसी का नाम है। और वक्त देखिए कैसे गुजर गया, पता नहीं चला। और सिर्फ 8 मिनट रह चुके हमारे आज के प्रोग्राम में रह गए। और मैं इस वक्त ही चला रहा हूं, ये लास्ट सेकंड लास्ट ट्रैक है और आवाज है बनेगी। समीर बलोच आपकी पसंद का ट्रैक, जी हाँ बिल्कुल बनेगी आवाज में बिल्कुल प्ले करने लगा हूं। वो दरमियान में बस वो रह गया, मगर अब हम प्ले कर रहे हैं बनेगी आवाज।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।